ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून 2026 सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बज रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचारों का बुलेटिन सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री

0: एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने श्री रामचरितमानस।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

अजीत सिंह और कविता कृष्ण मूर्ति की, संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार। ईश्वर के अनेक रूप हैं, वो हमें मुश्किल समय में मदद के लिए पढ़ने वाले हाथों के रूप में नजर आते हैं। सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अलका याग्निक की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त होता है। जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी।

है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत में आपको सुनाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में समीर का रचा तराना, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में संघर्ष फिल्म से।

अभी तो जी ले, आइए सुने इस फिल्म का गीत इंदिवर का रचा हुआ। संगीत सपन जगमोहन का है, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

ये हैं छोटी बहू फिल्म का गीत। आवाजें हैं साधना सरगम की और साथियों की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का है।

कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में इंदी वर्गा की रचा तराना फिल्म संगीत की आखिरी पेशकशें। फिल्म का नाम है आज की औरत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक जी। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं आइए सुनते हैं हमारा नियमित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों को रेडियो रहबर रेखा भाटिया का नमस्कार, सुस्वागतम।

सुस्वागतम एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का। श्रोतों, हमारे व्यवहार की बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जिनसे मिलकर हमारा

ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जिनसे मिलकर हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व बनता है। जो एक एक कर एक ऐसी कड़ी में पिरोती है हमारे व्यक्तित्व को, जिससे कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व जाना जाता है। क्या सोचते हैं आप? क्या हमारी पहचान हमारे नाम से है? नहीं। धर्म से है? नहीं। जाति से? बिल्कुल भी नहीं। पद या ओहदे से भी नहीं। श्रोताओं, हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया गया व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान है। कैसे? बताते हैं आपको इस संगीतमय शीतल संदेश के बाद।

जी हाँ, हमारे अच्छे कार्य ही हमारे व्यक्तित्व की असल पहचान है। वो भी तब किए गए कार्य जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता है। ऐसे समय में पता चलता है कि हम असल में क्या हैं। इंसान जब एकांत में होता है, जब उसके साथ कोई दूसरा इंसान ना हो, तब ना तो वो किसी धर्म का होता है, न जाति का, न नाम का, न समाज का। वो सिर्फ एक इंसान होता है। और ये तमाम आवरण जो हैं, वो सामाजिकता के ताने बाने, सामाजिकता के जामे हैं। हमारी असली पहचान हमारी इंसानियत है।

जी हाँ, इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद ही पन्ना खोलो गीता और कुरान का। इंसान यदि इंसान के ही काम ना आए तो हम कैसे सभ्य मानव होने का दम भर सकते हैं। हमारी सभ्यता की पहली सीढ़ी ही प्रेम, समर्पण, दयालुता और परोपकारिता है। और ये सारी बातें इंसान में एक दो चार दिनों में नहीं पैदा हो सकती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती आई है। हम जिस माहौल में रहते हैं, हम वैसे ही हमारे व्यवहार में उसे ढालते जाते हैं, हम वैसे ही होते चले जाते हैं। और ये व्यवहार एक दिन हमारे व्यक्तित्व में ढलकर हमारी संपूर्ण पहचान बन जाता है। अब ये हम

जहर उगलते सोशल मीडिया के इस युग में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हमारे आसपास के माहौल को ऐसा रखने में योगदान दें जिससे कि सामाजिक, सांप्रदायिक सामंजस्य और सौहार्द की भावना को मजबूती मिले।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत रेडियो रहबर रेखा भाटिया के साथ। आज हम बात कर रहे हैं बातों की। जी हाँ, हमें मजाक में भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी की निजी भावना आहत हो। मजाक वो नहीं मजाक कहलाता है जिसमें किसी की निजता का हनन हो। किसी का दिल दुखे ऐसा मजाक किस काम का। आपका मजाक किसी के लिए सजा ना बने, किसी के दिल के जलने की वजह ना बने, इस बात का ध्यान रखिए।

जानते हैं, हमारी बातचीत, हमारे किसी के साथ बोलने का तरीका हमारी संपूर्ण परवरिश का परिचायक होती है, हमारी व्यक्तित्व का आईना होती है हमारी बातचीत। जब जब हम बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तब तब हम ना केवल अपना बल्कि अपने माता पिता, अपने संपूर्ण परिवार का परिचय देते हैं, यहाँ तक कि अपने समाज और अपने देश का परिचय भी देते हैं। अपनी बातचीत के दौरान हमारे द्वारा चुने गए शब्द, बोली गई बातें ये दर्शाती हैं कि हमारा नैतिक स्तर कैसा है, हमारा परिवार कैसा है और हमारे संस्कार कैसे हैं। इसीलिए तो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बोलने से पहले तोलें और फिर बोलें, ऐसा बोलें कि सुनने वाला आपकी बातों की मधुरता में खोकर रह जाए।

श्रोताओं, बातों की मिठास हमें इतनी लुभाती हैं कि बातें किए बिना हम नहीं रह सकते, हम खाए बिना रह सकते हैं। और कभी कभी हम लोग बेवजह की बहस में लोगों के साथ उलझ जाते हैं और अपने ही रिश्ते खराब कर लेते हैं। सार्वजनिक मुद्दों पर हो या व्यक्तिगत मुद्दों पर बात हो, कोई भी बहस सार्थक परिणाम लाएगी या नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ संवाद कीजिए, अच्छी बातचीत कीजिए और बातचीत की गरिमा की रक्षा करते हुए बातें कीजिए। हम उस देश के बाशिंदे हैं जो अपनी बातों की मिठास और अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। उस देश के बाशिंदों को हम ये कहें कि मीठी बातें कहें तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हम तो अपनी मीठी बातों के लिए, अनोखे अंदाज के लिए, यहाँ की विविधता में एकता के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हमारे बोलने के तरीके से, हमारी बातचीत से हम ना केवल अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, बल्कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देते हैं।

सिर्फ बोलना बड़ी बात नहीं है, जहां जरूरी हो वहां बोलना और बोलना सार्थक, यही एक परिपक्व और जिम्मेदार इंसान की पहचान होती है।

जी हाँ, परों से हल्की बात करना ज़रूरी है। माध्यम कोई भी हो, संवाद ज़रूरी है। भावनाओं की भाषा बड़ी जटिल है, सरल हृदय से उनका अनुवाद ज़रूरी है।

अच्छी अच्छी बातें कीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए। इसी बात के साथ दीजिए रेखा भाटिया को विदा। शुभ दिवस।

0: आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, सवेरे के 8 बजने को है। कुछ क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार प्रभात और उसके बाद अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज सुनेंगे।
1: पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

0: ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और

0: के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, चार दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for export.

0: दोस्तों नमस्कार। नया दिन, नए विचार, नई ऊर्जा के साथ मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन।
1: दोस्तों, जिंदगी रोज एक मौका देती है, नया दिन, नई सुबह, नई सोच के साथ। तो अगर कल कुछ अच्छा ना हुआ तो आज बेहतर करने का मौका है। तो बिल्कुल, असली ताकत वही है जो गिरकर भी मुस्कुराने की हिम्मत रखे। तो आज एक वादा करते हैं, हर पल को जिएंगे, खुलकर जिएंगे, सच्चे दिल से जिएंगे। बस इसी खुद से किए वादे के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। आज के मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम इस वक्त आपके साथ ट्यून्ड है आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। और इस वक्त जो नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम आपसे नमस्कार को रूबरू करवा रही है, उससे करवा देते हैं आपका परिचय।
0: और नमस्कार की टीम में ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख।
1: तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं इंजीनियर सुनील जयपाल।
0: और एचपीटी कंसोल पर हमारा साथ दे रही हैं रेखा भाटिया।
1: वहीं एफएम के ट्रांसमीटर पर है अनाउंसर ऑन ड्यूटी कविता सांखला।
0: और पूरी टीम के साथ कार्यक्रम की होस्ट मैं चंद्रकला सुथार।
1: और दोस्तों, मैं हूं स्वाति भंसाली। और इस पूरे कार्यक्रम की थीम तैयार की है कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजेश लामरोड ने। और दोस्तों, आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में होंगी आपसे ढेर सारी बातें और उनके साथ ही सुनवाएंगे आपको गाने, नए नवेले। तो कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा पहला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: स्वाति जी, कहते हैं ना कि कोई भी डर जब हमको सताता है तो उस डर को जब हम पार कर लेते हैं तो हम नई चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, और सीखते रहने से रचनात्मकता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए किसी काम को लेकर मन में कोई डर हो तो उसे दूर करना ही समझदारी है। इससे हमें नई चीजें सीखने का जो अनुभव है वो भी मिलेगा।
1: बिल्कुल। और चंद्रकला, देखो ना, ये जो अनुभव है हम भी तो हमारे श्रोताओं के साथ रोज ही साझा करते हैं। जब भी हम रोज अपनी श्रोताओं से नई नई बातें शेयर करते हैं, नई नई जानकारियां शेयर करते हैं, तो हमारा भी अनुभव बढ़ता है और श्रोताओं का ज्ञान भी बढ़ता है। और डर तो निश्चित तौर पर दूर भागता ही है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार महात्मा गांधी से भी किसी ने पूछा था कि आपके जीवन का रहस्य क्या है, तो
0: अच्छा।
1: उन्होंने भी कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो हम सबका जीवन भी तो संदेश बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमारा जीवन ऐसा संदेश बन सकता है जिससे लोग सकारात्मक रूप में याद रखें, या हमारा जीवन ऐसा संदेश दूसरों को देगा जिससे लोग हमें नकारात्मक रूप में याद रखें? चुनाव हमारा है, क्योंकि कर्म भी हमारे ही होंगे। तो बिल्कुल, बातें आपसे शेयर करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: स्वाति, अक्सर लोग कहते हैं कि बीता हुआ कल वापस नहीं आता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जो ये यादें हैं, जब हम पीछे छोड़ के आते हैं, तो वही हमारे आने वाले कल के लिए ज़रूरी होती है। और जो ये सिर्फ यादें होती हैं, ये बीते हुए दिन नहीं होते हैं। कभी-कभी जब हम हार मान लेते हैं, तो ये पुरानी यादें ही तो होती हैं जो हमें एहसास दिलाती है कि हमने कितनी मुश्किलों से, कितने संघर्ष के बाद आज को पाया है।
1: बिल्कुल। और ये जो आज है, इसे खूबसूरत बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब की है। देखिए, बीते हुए कल को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आने वाला कल कैसा होगा उसको तय करने की जिम्मेदारी हमारे आज की है। और वैसे कल कैसा होगा ये तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ हमेशा ही रहता है। जिंदगी की खूबसूरती भी तो बस यही है। अगर सोचे ना, सब कुछ पहले से पता हो तो जिंदगी बोरिंग लगने लगेगी ना। लेकिन जैसे ही कोई अचानक से अच्छी खबर मिलती है या अनपेक्षित खुशियां मिलती है, तो फिर दिल झूम उठता है। तो इसीलिए जीवन को आश्चर्य की तरह जीना चाहिए, कभी भी समस्या की तरह नहीं मानना चाहिए। बस सोचे ना, आपके लिए भी तो एक आश्चर्य है, आने वाला गाना कौन सा होगा ये भी तो आपके लिए सरप्राइज है।
0: बिल्कुल। तो आज अपने बीते हुए दिनों को याद कीजिए, लेकिन ठहरिए मत दोस्तों। यादें आपको सिखाने के लिए आती हैं, रुकने के लिए नहीं। आगे बढ़िए, नई यादें बनाइए और अपनी जिंदगी को और भी शानदार बनाइए।

स्वाति, ये जो दूरी का फलसफा है वो भी बड़ा अजीब होता है ना। हम जितनी कोशिश करते हैं कि यादों से किनारा कर ले, बातों से किनारा कर ले, एहसासों से किनारा कर ले, लेकिन वो उतनी ही गहराई से हमें घेर लेती हैं। जैसे कोई मुसाफिर होता है, वो अपनी मंजिल को बदलता तो है, पर लौटता कहाँ है? उसी पुरानी गली में।

0: वैसे ही हमारा दिल भी अक्सर यादों की पनाह में आता रहता है।
1: बिल्कुल। और ये जो यादों की पनाह है ये सुकून भी देती है हमेशा हमें। और जब सफ़र की बात चली है तो हमारा ये जो आजकल का मॉडर्नाइजेशन का सफ़र है ये हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर भी कर गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो ज़रूरत जिस तरह से हम यादों के सफ़र में वापस लौटते हैं, सुकून पाते हैं, उसी तरह से अगर हम भी फिर से प्रकृति के पास आ जाएं, पेड़ों की छांव में अगर हमें सुकून मिलने लगे, नदियों की कलकल सुनने में अगर सुकून मिलने लगे, झरनों के बहते कलरव में अगर सुकून मिलने लगे, पक्षियों की चहचहाट में सुकून मिलने लगे, तो फिर क्या ही बात है। लेकिन शहरों में थोड़ा मुश्किल है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या किया जाए, फिर से उस सुकून की ओर लौटा जाए, प्रयास वही किए जाए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया जाए। बातें आपसे शेयर कर रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।

0: स्वाति कह रहे हैं इस गाने में कि मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, क्या मुंह फेर लेना समाधान है किसी बात का?
1: बिल्कुल भी नहीं, मुंह फेरना समाधान नहीं है, बल्कि अगर कोई समस्या आ जाए उसका खुल के सामना करना ही तो सच्चा समाधान है।
0: बिल्कुल, जब हम किसी मुश्किल काम से मुंह फेरते हैं तो हम केवल काम को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम उस सीखने वाली जो प्रक्रिया है उसको भी छोड़ देते हैं, और मौके होते हैं जो अच्छे अवसरों के, जो मौके मिलते हैं हमें, अच्छे अवसर मिलते हैं, वो भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं।
1: तो फिर करना क्या है, जब भी मौका दे जिंदगी उसको लपक लेना है, तभी तो जिंदगी
0: बिल्कुल
1: खुशगवार होगी। तो बिल्कुल हमारे सामने भी मौका है हमारे श्रोताओं को खूबसूरत गाना सुनवाने का, तो बिल्कुल सुनवाते हैं।

0: तो 9 बजने वाले हैं, यहाँ हम न्यूज़ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: जी, आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया।

0: बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: देश में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान

0: पुलिस ने भी आम जन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई।

0: ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़क कर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली, बहरोड।
1: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थी। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, सौ कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जो कि इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। और नमस्कार में हम इतिहास के आईने में अगर नजर डालें तो फिर आज का दिन कुछ अलग सा ही नजर आता है, क्योंकि बहुत वैसे तो हर दिन अपने आप में कोई ना कोई सीख दे जाता है, लेकिन आज का जो खास दिन है वो हमें बता रहा है कि सन 1987 में आज ही का वो दिन था जब ब्रिटिश चुनावों में मार्गरेट थैचर को तीसरी बार ऐतिहासिक विजय मिली थी।

0: साथ ही दोस्तों, इतिहास में आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के लिए भी अमर है। प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों पर लगान बढ़ा दिए जाने के विरोध में 12 जून 1928 को बारडोली में व्यापक किसान आंदोलन और सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
1: साल 2008 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वें ओसियाना सिनेफैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था। दिन आज ही का था, यानी कि 12 जून का।
0: साथ ही दोस्तों, क्रिकेट इतिहास के सर्वकालीन महान ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के सर गारफील्ड यानी गैरी सोबर्स को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था।
1: साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का बैडमिंटन में खिताब जीता था। दिन आज ही का था, यानी कि 12 जून का, और साल था 2016 का।
0: और 1982 में मशहूर भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को उनके अभूतपूर्व वैज्ञानिक योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी।

आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। इस गीत से पहले हम इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इतिहास बन के भी अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक आवाज़ थी गौरी देवी की, पाली की प्रसिद्ध और दिग्गज मांड गायिका रहीं। और वैसे जोधपुर रियासत को इन्होंने जो पहचान दिलाई वो दुनिया भर में इनके नाम से जानी जाने

लगी और 8 दशकों तक इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत और मांड गायकी को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इनका जन्म 1920 में हुआ था जोधपुर में ही। माता पिता भी बीकानेर दरबार में पेशेवर लोक कलाकार थे। पाली को अपनी कर्मभूमि बनाया विवाह के बाद और देश भर के मंचों पर प्रस्तुतियां दी और खास तौर पर भैरवी युक्त मांड गायकी जो थी वो अपने आप में इनकी अलहदा थी, विशेष थी। और मांड के अलावा ठुमरी, गजल और भजन भी बखूबी गाती थी। मरु कोकिला के नाम से जानी जाती थी अपनी सुरीली और खास आवाज के कारण। शरीर से आज भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। कल यानी कि गुरुवार को इन्होंने रात्रि में अंतिम सांस ली थी अपनी आवाज पर, लेकिन आज भी अपने पीछे अपने परिवार में मांड गायकी की समृद्ध विरासत ये सौंप के गई हैं, जो इनकी विरासत को, इनकी आवाज को आगे लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाने का एक जो गुरुतर दायित्व है वो अपने कंधों पर लेते रहेंगे। और बिल्कुल हमें, हम भी नमस्कार कार्यक्रम पूरे और परिवार की ओर से इन्हें देते हैं भावभीनी श्रद्धांजलि और आपको सुनवाते हैं इन्हीं की खास आवाज़।

0: दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को सेगमेंट होता है शुक्रवार की किताब। आज इस सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 के बारे में। यह एक प्रसिद्ध डिस्टोपियन किताब है। मुख्य रूप से सत्तावादी शासन, सामूहिक निगरानी और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के दमन के खतरों पर यह आधारित है। इसकी कहानी ओशेनिया नामक काल्पनिक देश पर आधारित है, जिस पर बिग ब्रदर के नेतृत्व वाली पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है। यहाँ थॉट पुलिस और हर जगह लगे कैमरे नागरिकों पर 2400 घंटे नजर रखते हैं। कहानी का नायक विस्टन स्मिथ सत्य मंत्रालय में काम करता है। उसका काम सरकार के हिसाब से पुराने इतिहास, अखबारों और रिकॉर्ड्स को बदलना, यानी झूठ को सच साबित करना है। सिस्टम से परेशान होकर विस्टन अपनी सोच को स्वतंत्र रखने की कोशिश करता है और जूलिया नाम की लड़की से प्रेम करता है, जो इस तानाशाही समाज में पूरी तरह मना है। अंततः सरकार उसकी इस बगावत को बेरहमी से कुचल देती है। और स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों, जिसे एक बार हासिल करके हमेशा के लिए सुरक्षित मान लिया जाए, बल्कि इसके लिए हर पीढ़ी को हर दौर में जागरूक और सतर्क रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और ये उपन्यास हमें सतर्क भी करता है, यदि सरकारें निरंकुश हो जाए तो हर व्यक्ति की निजता, स्वतंत्र विचार और सच का अस्तित्व कैसे काबू में किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर हम जिस तरह से हम भारत में लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो ऐसे में हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी एक नागरिक के रूप में स्वतंत्रता, इन दोनों को अलग-अलग रख के अपनी बातें रख सकते हैं समाज के सामने। और वैसे इस उपन्यास में जॉर्ज ऑरवेल ने हमें कई ऐसी शब्दावलियां दी थी जो आज भी राजनीति और समाज में प्रासंगिक है। सोचिए ना, कुछ ऐसे शब्द जैसे बिग ब्रदर। बिग ब्रदर के रूप में उन्होंने एक ऐसी सर्वव्यापी सत्ता बताई जो हर नागरिक पर निरंतर नजर रखती है। एक शब्द इन्होंने और दिया, थॉट पुलिस, एक ऐसा अधिकारी जो पार्टी के खिलाफ सोचने वालों को पकड़ देता है या गायब कर देता है। एक और बहुत ही खूबसूरत शब्द इन्होंने दिया, डबल थिंग, एक ही समय में दो परस्पर विरोधी बातें हैं और दोनों को ही सच माना जा सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो खूबसूरत काम है, ये किया है जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नई शब्दावली द्वारा। और एक खूबसूरत शब्द जिसकी बात किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी, वो शब्द था न्यू स्पीक। बिल्कुल एक ऐसी कृत्रिम भाषा जो इसने लोगों की सोचने की क्षमता को सीमित करने के लिए ही बनाया गया है। सोचे ना, ये कितने खूबसूरत शब्द, कितने अलहदा सी

0: एक शब्दावली इन्होंने बनाई थी जॉर्ज ऑरवेल ने अपने इस खास कालजयी डिस्टोपियन उपन्यास 1984 में, और ये प्रकाशित हुआ था 1949 में। और बिल्कुल आपको भी समय मिले तो ये उपन्यास आज जरूर समय निकाल के पढ़िएगा। फिलहाल बातें यहीं तक, सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।
1: हाथों में किताब

0: और इसी विषय पे खास बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर बीएल सारस्वत, जो कि सहायक निदेशक हैं जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल अधिकारिता विभाग जोधपुर से, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का। और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं खास तौर पर किस तरह से आज का ये जो खास दिन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये प्रासंगिक है और किस तरह से हम बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं और बाल श्रम से उन्हें बचा सकते हैं। तो डॉक्टर बीएल सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार कार्यक्रम में।
1: मैडम नमस्कार, सभी को नमस्कार।
0: सर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये जो दिन मनाया जा रहा है, ये खास तौर पर बच्चों के जो काम करने लगे हैं, खास तौर पर फैक्ट्रियों में या अवैध रूप से दुकानों में या होटलों में रेस्टोरेंट्स में, किस तरह से ये जो बचपन है उनका ये छीना जा रहा है, ये समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है।
1: जी मैडम, आप सही फरमा रहे हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो बाल श्रम की समस्या पूरे विश्व में मौजूद है,
0: जी।
1: भारत में भी ये काफी मात्रा में मौजूद है। अगर हम जोधपुर जिले की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम करती है,
0: जी,
1: उसके विभिन्न विभागों से समन्वय करके, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास है, इन सभी की एक जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी बनी हुई है। तो समय समय पर ऐसे जो एरियाज है, जो जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, कच्ची बस्तियां हैं,
0: जी,
1: वहाँ पे समय समय पर शिविर भी लगाए जाते हैं और उनका चिन्हीकरण किया जाता है। पहले तो प्रथम दृष्टया
0: जी,
1: चिन्हीकरण के बाद में फिर उन बच्चों की रेस्क्यू की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि बच्चा उसमें लिप्त है तो उसका कोई अपराध नहीं है। जो
0: बिल्कुल,
1: नियोक्ता उन बच्चों को अपने फैक्ट्री में या किसी होटल में कार्य करने के लिए लगाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।
0: जी, लेकिन
1: अपने ऊपर
0: एक
1: पालन है। जी
0: कई कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ना कि किसी की पारिवारिक मजबूरी ऐसी रही हो घर में, या कोई कमाने वाला नहीं है, फिर ऐसे में अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो उस बच्चे का कमाना मजबूरी हो जाती है, और अगर कानून के हिसाब से देखें तो ये एक अपराध भी बन जाता है।
1: जी आप सही फरमा रहे हैं मैडम।
0: जी
1: मजबूरी वाली बात अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो है
0: जी
1: वो आपको रास्ते में, जैसे आप जाओगे तो कार साफ करते हुए या किसी होटल में बर्तन साफ करते हुए मिल जाएंगे।
0: जी
1: एक्चुअल में वो बच्चे सब जो है उन परिवारों से हैं, जो परिवार दूसरे राज्यों के या दूसरे जिलों के जो माइग्रेट होके यहाँ पे आते हैं,
0: जी,
1: और उनमें से ज्यादातर परिवार के उनमें माता पिता का जो है वो टूटे हुए परिवार होते हैं। पिता का अता पता नहीं होता है तो माँ कहीं मजदूर भी जाती है तो बच्चा पीछे बाल श्रम करता है या बाल भिक्षावृत्ति करता है। बाल भिक्षावृत्ति धीरे धीरे करते करते बाल श्रम का रूप ले लेती है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि उनके जो उनकी मेन समस्या होती है दस्तावेज की,
0: जी,
1: ऐसे परिवार में हमने सर्वे करवाया था पिछले साल जिला प्रशासन के माध्यम से मिशन मुस्कान।
0: जी जी
1: तो उसमें हमने 1,850 बच्चे ऐसे चिन्हित किए थे जो कि झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, तो वो बच्चे आगे बाल श्रम करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले उनके दस्तावेज तैयार करें, क्योंकि जब तक उनके दस्तावेज नहीं बनेंगे तब तक वे किसी न किसी सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: बच्चा इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार में गुजारा नहीं चल रहा है। तो सरकार के पास ऐसी सभी स्कीमें हैं जिसमें कम से कम उसके परिवार का जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
0: जी,
2: लेकिन सर आपने कहा कि सरकार के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारे देश में बाल श्रम को लेकर कड़े कानून भी हैं। इसके बावजूद यूं कहें कि कमी कहां रह जाती है कि लोग बिना डरे बच्चों से काम करवाते हैं?
1: कमी तो मैडम थोड़ी जागरूकता की भी है। और ज्यादातर जो केसेज दर्ज किए जाते हैं
2: जी,
1: उसमें क्या होता है मैडम, इस एक्ट में दो तरह के रूल है। एक तो जो बच्चा 14 साल से कम है और वो जोखिम भरे, जो एक्ट है 1986 का, बाल श्रम निषेध जो अधिनियम है 1986, 2016 में संशोधित हुआ था
2: जी,
1: तो उसके अनुसार एक धारा 3 में जो एक अनुसूची बनी हुई है क और ख, उस अनुसूची में जो जो काम आ रहे हैं उसमें अगर वो बच्चा 14 साल से कम है तो उसके ऊपर ये बाल श्रम की धाराएं लगती है। अन्यथा 14 और 18 साल के जो बीच में बच्चा है वो भी बाल श्रम नहीं कर सकता है, लेकिन उसके उसके ऊपर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो 79 धारा लगती है जिसमें उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको विद्यालय से जोड़ा जाता है और उसके परिवार को समाज कल्याण की जो स्कीम्स है, पेंशन है, पालनहार योजना है, उनसे जोड़ा जाता है ताकि भविष्य में वो बच्चा बाल श्रम की पुनरावृत्ति नहीं करें।
2: जी सर, और एक आम नागरिक के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, अगर हम अपने आसपास किसी ढाबे या घर में

श्रोताओं, आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और नमस्कार में अब करते हैं खास बात विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, जो कि आज और हर साल 12 जून को ही मनाया जाता है। वैसे बाल श्रम की समस्या तो दशकों से प्रचलित है।

0: किसी बच्चे को काम करते हुए देखें तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? इसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है तो
1: जी
0: आप
1: मैम,
0: साझा?
1: इसमें मेरा निवेदन ये है कि जितने भी जो 18 साल से कम वाले बच्चों की जो बाल समस्याएं हैं, जैसे जरूर नहीं बाल श्रम है तो बाल विवाह भी है, तो ये सामाजिक जो समस्याएं हैं उसमें विभाग तो काम कर ही रहा है,
0: जी
1: लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी का एक कर्तव्य है कि जहां पर भी हम ऐसी शिकायत देखे हैं, अपने को अगर मान लो सामने नजर आ रहा है ये बाल श्रम हो रहा है या बाल विवाह हो रहा है, तो हमें 1098 पे कॉल करना चाहिए।
0: अच्छा
1: हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई में ही इसका 1098 का एक चाइल्ड लाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर, तो इसमें बकायदा ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है और
0: जी
1: जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वो शिकायत उसमें ऑनलाइन में दिखती रहती है। तो
0: सर,
1: हम
0: अगर
1: क्या करते
0: कोई
1: हैं कि
0: इस
1: इसे
0: सू जी अगर कोई सूचना की हेल्पलाइन नंबर पर देता है अगर कोई सूचना, तो क्या उसका नाम गुप्त रखा जाता है?
1: जी बिल्कुल मैडम, उसका नाम गुप्त रखा जाता है और हमारे यहाँ से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक टीम बना के भेजती है, और
0: जी
1: वाकई अगर वहाँ पे बाल श्रम हो रहा है तो ये इसमें जो एसओपी बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उसके अनुसार जो संबंधित थाने का जो एक बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त होता है, प्रत्येक थाने में जो बच्चों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक बाल कल्याण अधिकारी होता है, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद बाल जो लेबर इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उनके बयान लिए जाते हैं, एसडीएम के द्वारा भी 164 के बयान लिए जाते हैं और उसका ये पता लगाया जाता है कि वाकई वो उसकी उम्र उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, या वो बाल श्रम की श्रेणी में है या नहीं है।
0: जी आपने इस
1: इसमें
0: क्षेत्र
1: मैडम
0: में
1: सभी जो
0: जी
1: एनजीओ है वो सोशल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कई एनजीओ है जो बाल श्रम पे काम कर रहे हैं,
0: जी
1: तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ऐसे स्थानों पे जहाँ पे बाल श्रम की संभावना ज्यादा है वहां पे जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, और शिक्षा विभाग को चाहिए कि ऐसे बच्चे जो ज्यादातर टाइम से स्कूल नहीं आ रहे हैं उसका क्या कारण है वो वहां पर जांच करके देखें कि वो बच्चे कहीं बाल श्रम में तो लिप्त नहीं है। तो इसमें रूल भी है कि जो 30 दिन से ज्यादा बच्चा 1 महीने तक लगातार नहीं आ रहा है स्कूल तो उसके बाल श्रम में जुड़ने की संभावना रहती है, तो ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों का पता लगाकर उनको शिक्षा से जुड़ा जाए ताकि आगे वो बाल श्रम नहीं बने।
0: जी सर, आपने जिक्र किया था कि सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, तो कुछ योजनाओं के बारे में आप बता सकते हैं ताकि बच्चा काम छोड़कर स्कूल जा सके? क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता मिलती है, जैसे पालनहार योजना है, वो सब उनके बारे में?
1: जैसे मैडम सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जिनके कोई माता पिता नहीं है उनके लिए अपने किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत बाल गृह होते हैं,
0: जी
1: जोधपुर में भी ऐसे कम से कम 6 अपने गृह राज्य के बाल गृह हैं और गवर्नमेंट के भी किशोर गृह और बालिका गृह होते हैं, वहां पर उनको 18 वर्ष तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद में 14 से 18 साल के बीच में उनकी काउंसलिंग करके उनके हुनर की पहचान करके उनको किसी न किसी कौशल विकास से जोड़ा जाता है। तो अपने जोधपुर में मंडोर में हमारे कार्यालय में बाल परामर्श एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी है,
0: जी
1: जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2026 में जो भी बाल श्रमिक आएंगे उनका एक बैच बना के और उनको किसी न किसी हुनर से जोड़ेंगे, उनको स्किल ट्रेनिंग करवाएंगे।
0: अच्छा
1: इसी तरह से उनके अगर मान लो कि कोई विधवा का पुत्र है तो उनके माँ को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा जा सकता है, और उस
0: अच्छा
1: बच्चे को और उसके जितने भी भाई बहन हैं उनको पालनहार योजना से जोड़कर उनको एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है।
0: अच्छा और सर,
1: वैसे
0: आप इस जी
1: इसकी में काफी है, लेकिन उनके पास मेन ये होता है कि वो माइग्रेट वाले होते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो उनके जब भी पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में, तो उनके पास आधार कार्ड तक भी नहीं होता है,
0: ओ
1: तो उनके पास फिर आधार कार्ड नहीं होता तो सबसे पहले उनका है कि दस्तावेज जो है ना वो तैयार करने की समस्या रहती है। जी मैडम,
0: जी आप इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं सर? कुछ अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, जो भी
1: मैडम मैं
0: आपने
1: इसमें
0: किए हैं
1: ये
0: उसके
1: देखता
0: बारे में भी?
1: हूँ कि कार्रवाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, कार्रवाई से पहले कि वो बच्चा बाल श्रम क्यों कर रहा है, उनकी जो काउंसलिंग है उनके परिवार तक पहुंच सुलभ करके ये पता करना पड़ेगा कि वो बाल श्रम क्यों कर रहा है, उसकी मजबूरियां क्या है, अपन उसको अगर वहां तक निवारण कर देंगे तो आगे ये समस्या नहीं आती है। तो मेरा जो काम करने का तरीका होता है कार्रवाई करने का कम होता है, और प्लस उस बच्चे को उसके परिवार की स्थिति को देखकर उनके योजनाओं से जोड़ने की ज्यादा होती है।
2: बिल्कुल सर, ये तो बहुत मनोवैज्ञानिक तरीका है, बहुत ही एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि कई बार जो परिस्थितियां होती हैं सबके, हर बच्चे की अलग अलग होती हैं, और अगर आप वो परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही करते हैं तो वो सबसे सही है। लेकिन सर एक
1: जी
2: चीज़ है कि कई बार हम जैसे बाल श्रम को तो हम बचा लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस तरह की औद्योगिक इकाई में या इस तरह की दुकान पे यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से भी अगर देखें तो जैसे बाल भिक्षावृत्ति है, जो हम अगर सिग्नल पे जिस तरह से

0: हम जब भी रुकते हैं तो देखते हैं कि बच्चे और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जिस तरह से या तो वो गाड़ियां साफ करने की कोशिश करते हैं या कुछ एक सामान बेचने की कोशिश करते हैं या भीख मांगने की कोशिश करते हैं, तो ये भिक्षावृत्ति भी हो गई, उसके साथ साथ कुछ सामान उनको इस तरह से बेचने पर मजबूर किया जाता है। तो क्या ये सब भी बाल श्रम में आता है? और
1: बाल
0: इसको
1: श्रम
0: रोकने के लिए
1: मैडम,
0: भी अलग से कुछ उपाय हैं?
1: हाँ बाल भिक्षावृत्ति जो है वो बाल श्रम में तो नहीं आता है,
0: नहीं, भिक्षावृत्ति
1: लेकिन
0: नहीं, लेकिन ये जो
1: आगे आगे
0: सामान बेचा
1: आगे
0: जाता है बच्चों के द्वारा।
1: मैडम वो सामान बचा जाता तो वो जो बच्चे हैं वो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आते हैं। उसमें
0: जी
1: 14 कैटेगरी है
0: जी
1: एक्ट में,
0: जी
1: जो बच्चे जैसे लावारिस घूम रहे हैं, जो सड़क के किनारे बैठे हैं, या जैसे कोई मतलब लावारिस अवस्था में घूम रहा है, या छोटी मोटी चीजें बेच के जैसे रोडों पे वो कार साफ कर रहे हैं,
0: जी
1: तो ये बाल श्रम नहीं आते, लेकिन उनका भी रेस्क्यू बाल श्रम के साथ साथ में किया जाता है।
0: जी
1: और भिक्षावृत्ति चूंकि वो आगे चलकर बाल श्रम का ही रूप ले लेती है, क्योंकि कई बार भिक्षावृत्ति के चक्कर में ऐसे कई गिरोह होते हैं जो उन बच्चों की ट्रैफिकिंग भी कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ये समस्या आगे जाके बाल तस्करी का रूप ले लेती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम और कुछ नहीं करें। जोधपुर जिले की जो बाल कल्याण समिति बनी हुई है, जिसे जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पावर है, उन बच्चों के सामने उनको पेश कर दें। तो ये जिम्मेदारी है कि जो संबंधित तो जो चौराहा होता है
0: जी
1: उसमें जो ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक में लगे हुए हैं, उनको तुरंत 1098 पे या बाल कल्याण समिति को या हमारे डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहिए। तो
0: बिल्कुल
1: ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है ना, इसकी
0: जी
1: थोड़ी कमी लग रही है मेरे को भी।
0: जी तो ये
1: तो
0: हम
1: इसमें
0: सब का एक कर्तव्य बन जाता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि आसपास जो भी ट्रैफिक पुलिस है सिग्नल के आसपास, उन्हें हम इस बात की सूचना जरूर दें।
1: बिल्कुल मैडम, आम आदमी भी इसको इग्नोर नहीं करे, जहां पर
0: हाँ
1: भी दिख रहा है ना तो संबंधित विभाग और जो 1098 है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहां तक उसकी सूचना अवश्य दें,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद में कार्रवाई अवश्य होगी।
0: जी। तो आज आप हमारे साथ जुड़े सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी कि हम किस तरह से बाल श्रम को रोकने में हम सहायता कर सकते, एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी फर्ज निभा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद मैडम,
0: जी।
1: बहुत बहुत
0: श्रोताओं
1: धन्यवाद आपका भी, सभी का।
0: श्रोताओं, इस वक्त नमस्कार कार्यक्रम में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए थे डॉक्टर बीएल सारस्वत, जो कि सहायक निदेशक हैं जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जोधपुर से, और आज इनसे खास बातचीत हम कर रहे थे नमस्कार कार्यक्रम में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का। बातें और भी करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ।

0: दोस्तों, अब कर लेते हैं जन आधार ऑटो अपडेट से जुड़ी हुई खास बात। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए जन आधार डेटाबेस को ऑटो अपडेट मोड पर डालने की व्यवस्था शुरू की है। नई व्यवस्था का उद्देश्य जन आधार डेटाबेस को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। जब किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी होता है तो प्राप्त डेटा के आधार पर शिशु का नाम उसकी माता के जन आधार कार्ड में एक सदस्य के रूप में अपने आप जुड़ जाता है। इसी तरह परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद डेथ रजिस्ट्रेशन के डेटा से मिलान करके उस सदस्य का नाम जन आधार परिवार से अपने आप हटा दिया जाता है। इस ऑटो अपडेट प्रक्रिया के सही तरीके से काम करने के लिए यह जरूरी है दोस्तों कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के समय माता की आधार संख्या, जन आधार रसीद पहचान संख्या और सदस्य आईडी का विवरण बिल्कुल सही सही भरा गया हो। साथ ही माता की आधार ई केवाईसी पूर्ण होनी अनिवार्य है। अगर किसी नवजात का नाम तुरंत दर्ज नहीं हो पाता है तो उसे कुछ समय के बाद बेबी ऑफ मदर नेम के रूप में अस्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में अपडेट भी किया जा सकता है। जोधपुर और पूरे राजस्थान के निवासियों के लिए यह एक आधिकारिक और वैध व्यवस्था है दोस्तों, जिससे अब लोगों को नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए अलग से ई मित्र या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है आज की खास बात।
1: दोस्तों, खास बात में हम बात कर रहे हैं जन आधार में बदलाव की। इसके साथ ही इसमें सीमा और शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। अगर जैसे व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे माता पिता का नाम या वैवाहिक स्थिति, उसमें भी पूरे जीवन काल में दो बार संशोधन किया जा सकता है। पहली बार तो ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है, लेकिन दूसरी बार से ₹15 का शुल्क इसमें निश्चित किया गया है। साथ ही साथ एक वित्तीय वर्ष में आय और शिक्षा दो बार अपडेट किए जा सकेंगे, इसमें भी पहली बार निःशुल्क, उसके बाद ₹25 प्रति संशोधन। और वहीं बैंक खाते में पहली बार बदलने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हर बार अपडेट करने पर ₹40 का शुल्क कटेगा। और अगर आप परिवार में विभाजन या मुखिया में बदलाव करते हैं नाम का, तो इसमें अधिकतम 5 बार संशोधन की सुविधा जन आधार कार्ड में दी गई है। तो ये तो थी आज की बात, खास बात। और अब बातें और भी शेयर करेंगे आपसे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान अपनी देह तो छोड़ जाता है, लेकिन उसके विचार, उसके कर्म और उसकी सीख अमर हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो हर युग में नई पीढ़ियों को राह दिखाते हैं। आज का दिन विशेष है और आज हम याद कर रहे हैं जयंती के रूप में कन्नड़ साहित्य और रंगमंच के पुरोधा सी के नागराज राव को, क्योंकि आज उनकी जयंती है। कन्नड़ साहित्य रंगमंच और संस्कृति के क्षेत्र में एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली नाम है। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने लेखक, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और पत्रकार के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्हें मुख्य रूप से उनके ऐतिहासिक उपन्यासों और कन्नड़ रंगमंच के उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई नाटकों की रचना की जो केवल पढ़ने में नहीं बल्कि मंचन और दृष्टिकोण से भी बहुत सशक्त उनके नाटक रहे हैं। पट महादेवी शांतला यह उनका सबसे प्रसिद्ध और कालजयी महा उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्हें कन्नड़ साहित्य जगत में अमर कर दिया। इसके लिए उन्हें व्यापक सराहना भी मिली। वे एक कुशल अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया और रंगमंच की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। कन्नड़ साहित्य और संस्कृति में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इतिहास को कल्पना और सच्चाई के अनूठे संगम के साथ पेश करने की उनकी जो कला है, वो आज के लेखकों को प्रेरित करती है। उनका पूरा जीवन कन्नड़ भाषा और संस्कृति की सेवा में समर्पित रहा है। साथ ही दोस्तों हम याद कर लेते हैं भरथरी गायन की अमर आवाज सुरुजबाई खांडे को। उनकी भी आज जयंती है। छत्तीसगढ़ की एक प्रख्यात लोक गायिका थी आप, जिन्होंने अपनी अद्वितीय आवाज और कला से छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, विशेषकर

भरथरी गायन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें भरथरी विद्या के सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। एक महिला कलाकार के रूप में उस दौर में मंच पर आना और लोक गायन को अपना करियर बनाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया था।

0: दोस्तों, आज हिंदी की जानी मानी कथाकार उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। वह हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। आज जन्मदिन के अवसर पर हम इस मंच से उनको शुभकामनाएं देते हैं और याद कर लेते हैं तेलुगु साहित्य के एक दैदीप्यमान नक्षत्र कहे जाने वाले डॉक्टर सिंगिरेड्डी नारायण को, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। और याद कर लेते हैं साथ ही पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे को भी, उनकी भी पुण्यतिथि है। लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्य अभिनेता और कथाकार, पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे देश पांडे की पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ आज ही के दिन पुण्यतिथि है राजकुमारी नीलोफर की, जिनकी सन 1989 में निधन हुआ था। और साथ ही साथ पंडित गोपीनाथ कविराज, जिनका सन 1976 में आज ही के दिन निधन हुआ था। ये संस्कृत के विद्वान और दार्शनिक थे। श्रोताओं, अब सांस्कृतिक समाचारों में बात करते हैं कि कल समापन होगा जोधपुर में चल रही है NSD की 30 दिवसीय बाल मंच वर्कशॉप का। और साथ ही साथ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु जोधपुर शहरवासियों के लिए आसन फोटो कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया जा रहा है, तो आप भी इसमें अपनी योगा के पोज करते हुए एंट्री भेज सकते हैं। खेल खबरों में कल मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही फुटबॉल के विश्व कप का आगाज हुआ था और अर्जेंटीना और पुर्तगाल अलग अलग ग्रुप्स में खेल रही हैं। भारत की पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन के ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं आज का खास दिन है क्योंकि आज आगाज हो रहा है 10वें महिला क्रिकेट विश्व कप का। पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के मध्य खेला जाएगा। और वहीं क्रिकेट में ही ट्राई सीरीज में अफगान ए टीम ने भारतीय ए टीम को 4 रन से हरा दिया था। और जब बात कर रहे हैं खास उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन से संबंध है, तो याद आती है

प्रसिद्ध अभिनेत्री खुर्शीद अख्तर, जिन्हें हम श्यामा के नाम से जानते हैं, आज ही के दिन 1935 में इनका जन्म हुआ था। फिल्म शारदा में अपनी हम उम्र मीना कुमारी की माँ की भूमिका निभाने से भी इन्होंने परहेज नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे रोल इन्होंने किए थे और इन्हें इसी फिल्म के लिए सन 1957 का सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इनकी आखिरी फिल्म थी हथियार, जो कि आई थी सन 1989 में। और अब याद करते हैं आज ही के दिन जन्मे इंजीनियर श्रीधरन को, जिनका 1932 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाने जाते हैं। 2008 में पद्म विभूषण से और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। और अब याद आती हैं एक दिग्गज अभिनेत्री और नृत्यांगना, पद्मिनी। आज ही के दिन 1932 में इनका भी जन्म हुआ था। हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु सहित कई भाषाओं की फिल्मों में, 250 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। और खास तौर पर इन्हें जाना जाता है फिल्म 1970 में जो आई थी, मेरा नाम जोकर, और 1960 में जो फिल्म आई थी जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला था। वो फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है, और उसका ये खास क्लासिक गीत जो बन गया है आज का नमस्कार का समापन गीत।

0: काश कोई रोक लेता समय को भी, पर समय को बांधना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बिल्कुल आज का नमस्कार बस यहीं तक आज के इस प्रोग्राम से। आपकी दोस्त स्वाति भंसाली,
1: और चंद्रकला सुथार को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोक संगीत।

इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के शुरुआत में आपको सुनाते हैं चंदन दास को।

आइए अब सुगम संगीत में आपको सुनाते हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की युगल स्वरों में दिनेश ठाकुर की रचना।

श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला प्रोग्राम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत में आपको पहला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म कुर्बान से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने। गीत के बोल है समीर के।

श्रोताओं, ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म मृत्युदाता से, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म मृत्युदाता से, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, आई फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसमें गाया है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है अरशद भोपाली ने और संगीतबद्ध किया राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बीवी हो तो ऐसी, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल समीर के हैं और कंपोज किया लक्ष्मी प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सनम बेवफा से, जिसमें आवाज है विपिन सचदेव की। गीत के बोल सावन कुमार के हैं और संगीत बद किया है महेश किशोर ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हनीमून से, जिसे गाए हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल एमजी हसमत के हैं और संगीत का जादू बिखेरा है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म फूल से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने, और कविता कृष्णमूर्ति के साथ साथ रहे उदित नारायण।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। इसमें आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत का जादू बिखेरा है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, इस फिल्मी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत के इस प्रोग्राम में पहली लोक रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुप्रिया की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अगला लोक रंग हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, ऋचा शर्मा का गाया हुआ।

श्रोताओं, लोक संगीत के इस प्रोग्राम में अगली लोक रचना हम आपके लिए लेकर आए हैं बनारसी लाल जौहरी की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, प्रोग्राम है लोक संगीत, और लोक संगीत के इस प्रोग्राम में ये लोक रंग शमसुद्दीन का गाया हुआ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के इस प्रोग्राम में श्रोताओं आइए आखिरी लोक रचना हम सुनते हैं कविता शर्मा की गाई हुई।

श्रोताओं, इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में श्रोताओं, पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत में श्रोताओं, अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौड़ की गाई हुई

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं ये रचना राहत फतेह अली खां की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, अल्ताफ राजा की गाई हुई।

0: श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है। श्री अठावले ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और मेक इन इंडिया अभियान ने तेज गति पकड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय भी समाज कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। जनगणना 2027 पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग की जानकारी मिलेगी, जिससे केंद्र सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और मदद होगी।
2: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिलेगी, और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का SC ST को ओबीसी को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
1: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है, जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में यह प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और 12 के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए यह प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्होंने नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया।

0: बनाया गया था और उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सकला किसान भाई ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आपकी कुर हो खेती बड़े काम काज आप लघु लघु क्रिया करो हो और हमें तावड़ो भी थोड़ो तेज पड़े है, बारियो भी बाजे है, थोड़ो बारियो रुके है, हमें थोड़ो सो आपने ध्यान रखना है कि भाई गर्मी नहीं लगे, काम करा आपा तो ठाडे पोरो जी को काम है थोड़ा हल्लो करा, सुबह आपरे जानजर के बेगो करला आपा और आतरनी भगत में भी आपा काम काज करला तो आपा अपने स्वास्थ्य रे भी थोड़ो ध्यान रख सका, लू भी नहीं लागे, तेज तावड़ो भी आपा नहीं लागे और बढ़िया कपड़ा पहन आपा खेती बाड़ी रो काम काज करा, पगा में जी का जूता है वे भी आपा पहरा और कोशिश आपा आ रखा कि भाई माता माते भी कोई कपड़ो रखा, थोड़ा आंखिया माते चश्मो लगाना आपा काम करला मालो धूप रो तो गर्मी सु जी को बचाव है आपा अपने स्वास्थ्य रो रखा और टेमो टेम ठंडो शीतल जी को पानी है मटकी रो वो आपने पीणो है। कई किसान भाई मान लो थोड़ा काम करे तो जटे पानी की व्यवस्था है उठू थोड़ा आगा आप रे काम काज करे तो ओज है कि भाई एक छोटी सी जी की दीबड़ी है आप हाथ रखा मान लो जिम्मे आपने प्यास लगे तो खेल छिया में बैठना आप पानी पीला, बोड़ी नीचे बैठना आप पानी पीला, जिको भी दरकत है उन्हें नीचे बैठन पानी पीला, थोड़ी बिछानी आपा खावा, स्वास्थ्य रो आपा ध्यान रखा किसान भैया, जदी जपा अच्छो काम काज आपा कर सका। किसान भैया काम काज आपा लघु लघु करा हा। आज आपने जानकारी दे रही हा कि भाई कुष्मान कुल्ली जी की सब्जियां है इंद्र महीने कीट नियंत्रण जी को कार्य है वो आपा किन तरह से कर सका। हम बात आवे कि भाई कुष्मान कुल्ली जी की सब्जियां है एक कद्दू वर्गीय सब्जियां होया करे, ज्यू लौकी है जिन्हें आप आल के वहां कद्दू है, टिंडिया टिंडा है, करेला है, काकड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ए सगला जी का है ए कुष्मांड कुल्ली सब्जियां मायने आया करे और खास बात आ हो कि ए जी का कद्दू वर्गीय सब्जियां जी की है इनर मायने विटामिन ए वे सी वे कैल्शियम वे आयरन भी प्रमुख रूप से स्रोत मानी जा करे तो अपा ए सब्जियां जिमा स्वास्थ्य वर्धक है। हम बात आवे कि भाई इन वर्गी जी की सब्जियां है इनर मायने जी का कीट लगे तो प्रमुख एक कीट है जी आप बात करा लाल मकड़ी जिन्हें आप बरूती भी किया करा, इनरो शिशु जिन्हें आप अंग्रेजी में निम्फ किया करा और मोटो वयस्क जी का मकड़ी भी वे दोनों अवस्था जी की वे छोटो वो चाहे लाल मकड़ी मोटी वे ए पौधा ने हानि पहुंचाया करे। आज की मकड़ी है पतियारी निचली जी की सतह है उर्माते आ लाग जाया करे और रस चूस प्रो और नुकसान पहुंचाया करे जिन कारण कही वे के पतिया माते सफेद जी का दब्बा है ए आपरे बन जावे, धक्के जान कही वे के ए दब्बा भूरा रंगरा हो जाया करे और एक काम में और क्रिया करे कि भाई आपरे भरेड़ा जी का रेशमी जी का जाड़ा पतिया ने आपरे

लिया करे। और हवा चले, जमीन रा माथे जी का मिट्टी रा कण है ए जाड़ा माते लाग जावे और गहरा सघन बना दिया करे। गुंती जाए एक तरह आपा बात करा, इनु कही वे के पतिया जी की प्रकाश संश्लेषणी जी की क्रिया करे वह नहीं कर पावे, जिनसु पतिया बहुत प्रभावित हो जावे और पतिया गिरनी हरू हो जाए करे। फूल भी घना आवे कोनी और फल फूल नहीं आवेला जद फल भी घना लागे कोनी, तो इन कारण कहीं वे किसान भाई ने नुकसान भी उठाना पड़ जा, उत्पादन जी को है फसल वो भी कम हो जा। हमें नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं कर सके, इथियोन 50 EC 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी दी दरू आप रे बढ़िया आपा घोल बनावा और आपा छिड़काव करा, जिनसु लाल मकड़ी रोजी को खात्मा है वो हो जाए करे। हम बात आवे की भाई कुष्मान कुलर महीने भले जो फल मक्की है आ भी लाग जाए करे, इन मकीरा भी प्रोड और लठ दोनों ही अवस्था महीने आ हुआ करे और दोनों ही

फिर अभी प्रौढ़ और लठ दोनों ही अवस्था रमाई ने आ होया करे और दोनों ही अवस्था जी की है पौधा ने नुकसान पहुंचाया करे। प्रौढ़ मकी आपरा जी का अंड निक्षेपक जी ने आपा कहवा ओविपोजिटर इंडी मदद सु फला रमाई ने आपरे छेद कर परा और गुद्दा रमाई ने आपरे इंडा दे दिया करे और बारू कहीं करे के छेदा ने आपरे एक लसदार जी को पदार्थ है वो उन आपरे फाचो बंद कर दे ढक दे। अंडा 3-5 दिन रमाई ने जिकी लठ है आ बन जा और फल ने कहीं करे महीनो महीने आपरे खावणो हरू कर दिया करे जिनसु ओ जी को फल है सड़ने लाग जा और गिर जाया करे। तो हमें फल मकीरो जी को नियंत्रण है किसान भाई किन तरह से कर सके नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं करे के जिका काणा फल है उन्होंने आपरे एक तो तोड़ दे तोड़ पर अपन कहीं करना है जमीन महीने ऊंडो खाडो खोदना है और उन्हें उठे नष्ट कर देना और पाचो आपरे रेतु बूर देना है। दूजो काम किसान भाई कर सके भाई मेलाथियान 50 ईसी या डाई मिथोएट 30 ईसी 1 मिलीलीटर रो प्रति लीटर आपरे पानी महीने गोल बनावे और बढ़िया आपरे छिड़काव करे। किसान भाई इन्हें हाथे आते आप जी बात करा और जी को वर्ग जी को है कद्दू वर्गीय इन महीने लाल भ्रंग भी हो जाया करे और इन भी लट और भ्रंग दोनों ही अवस्था महीने पौधा ने नुकसान होया करे। भ्रंग पौधारी पतियारी जी की सिराए है इनरे बीच रहे जो को भाग हुए उन्हें आपरे खाजा और इन महीने बहुत ही नैना आपरे जी का है आपरे ठंडा कर दे। इन कीटो जी को प्रकोप है वो आप जी बात करा बसंत ऋतु महीने ज्यादा होया करे और इन जी की सूंडिया है जमीन महीने रिया करे और पौधा जी का तना है और जी की इंडी जड़ा है आपने कद्दू वर्गीय सब्जियां उन्हें आपरे खावनी हरू कर दिया करे। हमें नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं कर सके एसीफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी दी दरसों आपरे घोल बनावे और छिड़काव करे और भले किसान भाई आपरे 15 दिन रे अंतराल माते फाचो आपरे इन तेरह रोज को छिड़काव है भले आपरे दोहरा ले। कुल मिलान बात है के कुष्मान कुल्ली जी की सब्जियां है इन मैंने कीट नियंत्रण किसान भाई ने आपरे करनो चाहिए और समृति जी को कीट प्रबंधन है वो आपा करा तो बहुत ही इन फसल मैंने आपा लाभ ले सका। हमें क्या भाई गर्मिया मैंने खेतरी जी की है आपा ने 2-3 दान जी की है गहरी जुताई करनी चाहिए फसल चक्र आपने अपनाना चाहिए और साथ ही संतुलित जी को उर्वरक है वो भी आपन देना चाहिए और दूजी जी की सब्जी आपा बुआई करा उन पहला जो आपा बात करा भाई जैसे अक्टूबर नवंबर जो महीना है उन महीने आपा करा तो जी का लाल भ्रंगरो जी को प्रकोप है वो आपने कम रहे और फसल ली आपने प्रारंभिक अवस्था महीने टाइम टाइम माते आपने कई करना चाहिए कि भाई फसल ली निराई है गुड़ई है ये आपा करा जनसु कहीं वे लाल भ्रंग जी का है अवस्था महीने और फल मकीरा जी का शकुआ जी ने आपा प्यूपा किया करा इंडो जी को नियंत्रण है वो भी आपरे हो जाए करे। किसान भाई ये काम और कर सके भाई राकड़ो जी को बुरकाव है वो आपा करा क्योंकि गर्र महीने आपने बानी घनी हो जा तो लाल भ्रंगरो जी को आक्रमण हुए वो राकड़े बुरकाव सु कम हो जा करे और राख आपने हर किसान भाई घर में मिल जा बाटा चोटा भी बनावा आपा वोटे भी आपने राख मिल जा। हमें एक जो फल मक्खी और जी की सफेद मक्खी है इंडी जी की मॉनिटरिंग रे वास्ते आपने कई करना चाहिए मिथाइल युगोनोल पास या चिपचिपी पॉसरोजी को प्रयोग है वो आपने करना चाहिए। अप्रैल लेर जुलाई महीना रे महीने जी का वेस्क मक्खिया री रोकथाम रे वास्ते जहरीले पानी मिलोड़ जी को घोल है वो आपने बनान खेत रे महीने ठोड़ ठोड़ आपने रख देना चाहिए। इनके वास्ते 500 ग्राम गुड़ लेनो और 2 लीटर पानी में आपा बढ़िया घोल दा और उन महीने आपने कई करना है मेलाथियान 50 ईसी 20 मिलीलीटर दवा आपने मिलानी चाहिए। मिटीरा प्यालेरा महीने 50 मिलीलीटर घोल प्रति प्याले में आपा गाल दा और इनु कहीं वे के कीट आकर्षित हुए और आपरे नष्ट हो जाए। एक बात रो ध्यान रखो किसान भैया इन चीज रो प्रयोग करा तो आपा टाबरा ने भी अपने सावधान करना चाहिए टाबर आड़ पाड़े नहीं होना चाहिए वो अपने खास तौर से ध्यान रखना। फल मक्की सो जी का ग्रसित फल वे विन आपा कहीं कर सका इकटा कर सका भेड़ा कर पर बढ़िया खाडो खोद ना दबा दा पाचा बूर दा तो जिनसू और जी को आगे फल मक्की फैले को नहीं और जी को जीवन चक्र है वो आपरे खत्म हो जा। इन रहते आते मकड़ी जी को प्रकोप वे उनके नियंत्रण वास्ते प्रोपार जाइट 57 ईसी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर या आपा डाई कोफॉल 18.5 ईसी 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिला परार आपा छिड़काव करा तो इन तरह से आपा कुष्मान कुल्ली सब्जियां महीने भांत भांत जी का कीट लागे उनारो नियंत्रण आपा रख सका। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई कुष्मांड कुलरी सब्जियां मैंने कीट नियंत्रण जी को कार्य है वो आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो टेम पूरा वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सीखते रहो राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ग्रामीण महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम गणगौर।

0: गणगौर कार्यक्रम सुनण वाला सगळा हेताळू श्रोतावाने घणी मान राम राम और हार्दिक अभिनंदन श्रोतावा वेगो है दोपहर रो बखत आपारेन कार्यक्रम रो बखत आपरे सामी राजस्थानी गीता और राजस्थानी बातां रो ओ आपरो मन मोहनो कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ आपरी सखी मंजू चारण और मारे साथे आपरी एक और साथन ममता राजपुरोहित। तो ममता जी आपने भी घणी मान राम राम।
1: घणेमान राम राम मंजू जी और कार्यक्रम सुनने वाली सगळी हेताळी सखियां ने भी राम राम। सखियां राजस्थान रा रीति रिवाज रहन सहन भाषा संस्कृति लोक गीत संगीत री एक खास धसक है कि उन्हा में राजस्थान रे कण कण री आत्मा पड़का मारे। तो बिल्कुल इन आत्मा रो एक पड़को आप रे खातिर इन कार्यक्रम में ले आया हूँ मैं और मंजू जी। इन कार्यक्रम रे आगे लेर चला और आपने सुनावा ओगित।

0: पढ़ना लिखना रो सपनों सजानो बढ़िया लागे है, रोज सिंजिया पढ़िया पार्क में रमणो बढ़िया लागे है, मजबूरी कर दियो है आने समय पहली मोटो निरतर माथे माथे बोझ उठानो कीने बढ़िया लागे।
1: बिल्कुल। तो आ जो चार पंक्तियां मंजू जी आप सुनाई है ए इन दिन रे खातर विशेष ध्यान के देवन जोग है, क्योंकि आज है 12 जून और 12 जून ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस रे रूप में मनाया करो। इन दिवस ने मनानो उद्देश्य भी होई छे कि जो बच्चों रे जो बचपन है बिनी आपा मासूम बचपन री सुरक्षा कर सका, बिने शिक्षा दे सका, स्वास्थ्य दे सका और बियाने बियारो अधिकार रे प्रति जागरूक कर सका।
0: बिल्कुल सही बात की हो ममता जी, क्योंकि टाबरपणो है और अपन जीवन रो समय अनमोल समय रिया करे। अगर आप टाबरपणे में आप भी जानो और मैं भी जानूँ कि अपन ने आज भी पूछे कि आप के अगर जानी चाहो किन उम्र में, तो आप पाचो वही कह भाई मन बालपण मेल दो।
1: बिल्कुल।
0: तो वो बचपन है वो हमेशा चोखू ही लग गया करे है, पर आज जो को विश्व बाल श्रम दिवस मनाना रो कारण ही मोटो वही है कि एड़ा टाबरिया जका ने रे बचपन ने बचावन री खातिर लोगा नमाए इन वास्ते जागरूकता फैलानी इनो प्रमुख उद्देश्य रिया करे। हर साल ओ जून महीने री 12 तारीख ने तो आपा मनावा ही हाँ, इनने दुनिया भर में 100 ज़्यादा देश मनाया करे है। आज भी वैश्विक स्तर में अपन देखा तो बहुत बड़ा स्तर माते बाल श्रम और बाल मजूर जगह बापड़ा मजूरी कर रहा है। आप देखो तो कटई होटला मायने कारखाना मायने अपन कई जगह अड़ी देखा जगह अपन है घरा न मायने भी देखो आजकल राख रहा है। तो अगर आप अपना बच्चा ने सुरक्षित रखना चाहो तो बेबी किने टाबर है और बाने अधिकारों भी आपने ध्यान रखनो चाहिए। और अगर आप रे आड़े पाड़े कोई एड़ो बच्चो आपने दिख रही हो और आप उन मुक्त भी कराना चाहो तो एक टोल फ्री नंबर आया करे 1098, उन माते कॉल कर और आप आन टाबरा ने बटू मुक्त कराए सको हो।
1: बिल्कुल। तो गरीबी बेरोजगारी और अशिक्षा जड़ी मजबूरियां और समस्याओं के कारण बाल श्रम में फंसियोड़ा जो टाबर है बयाने छुड़ावना और

0: यारो पुनर्वास कराणो ब्याने उचित शिक्षा और सुरक्षा देवनी और ही इन दिन रो प्रमुख उद्देश्य है। तो चला इन तरफ
1: हाँ बिल्कुल ममता जी, आप बात तो आप सही की हो कि उद्देश्य वही हुए, क्योंकि इन बारे में मन चार पंक्तियां याद आवे कि भूख बुरी है भायला मिनक हुए मजबूर, भूख बुरी है भायला मिनक हुए मजबूर, रोटी दी खातर बनिया बालकिया मजदूर, रोटी दी खातर बनिया बालकिया मजदूर, बालकिया मजदूर नित उठ करे मजूरी, रहे मजा सु दूर सदा मन राख सबूरी। देखो नियत ही रहता मजबूर रहन बे इन तरीका रा काम करिया करे तो किनी इतो फायदो भी नहीं उठानो चाहिए। जटवान अधिकारा की रक्षा है वा नापन करनो चाहिए और हमेशा टाबरपणे ने टाबरिया ने टाबरपणो जीवन देनो चाहिए, क्योंकि वो एक बार गियो परो तो बार बार नहीं आवेला।

0: मंजू जी,
1: बिल्कुल हाँ।
0: देखो कि अब की बार जो आपनो जेठ महीनो है खूब लंबो चाल रियो है, अधिक मास रे चक्कर में है नी, तो अधिक मास चाल रियो है और अब गिणिया चुणिया दिन बच्चे है। अधिक मास रा
1: बिल्कुल
0: 15 तारीख ने है अमावस और अधिक मास री समाप्ति हो रही है अपने, तो अन बच्चोड़ा दिन और मायने जो भी थर्म और जड़ा लोग है जो कटे कह नहीं के तीर्थ स्नान कर नहीं आया,
1: बिल्कुल
0: ब्योर वास्ते एक खास चर्चा ले रहा आया हूँ आज। घना जना है जो लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सके या शारीरिक अक्षमता वे कि कर नहीं पावे, करना चाहवे पर नहीं कर पावे, तो अगर आप कम दूरी पर या राजस्थान में ही इन अधिक मास रो तीर्थ स्नान रो लाभ लेना चाहो तो राजस्थान में भी कई अड़ी जगह है मंजू जी जठे
1: बिल्कुल,
0: आपे।
1: अपन पुष्कर है,
0: हाँ
1: तीर्थराज
0: जी
1: पुष्कर, आप उठे जा सको और इन फायदे उठा सको। अपर
0: बिल्कुल
1: आप देखिए ममता जी, इन महीना हम आप सबरा लगातार अगर फोटो देखा सोशल मीडिया में आते हैं तो ज्यादातर ओ रेवे के भाई इन्हें हेंगानी तीर्थ की उड़ारी फोटो
0: हाँ, और
1: है
0: भाई
1: ना।
0: एक एक तो कहीं है कि एक दूजा वादे वादे अपन लागे के बह गया चलो आपे भी चलो
1: हाँ
0: यूं भी हो जावे कई बार है नी, तो बिल्कुल वही कहना चाहूँ कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सको कि हरिद्वार या कोई दूजी अड़ी जगह पर जठे आप जाना चाह रहे हो उठे जावा में सक्षम नहीं हो, तो आप राजस्थान रे मायने भी घनी अड़ी जगह है जठे तीर्थ स्नान रो लाभ ले सको, कि इन मास रे मायने कहवे नहीं कि दान पुण्य और स्नान पवित्र
1: रो
0: नदियों
1: घणो
0: रे मायने
1: महत्व है,
0: स्नान रो
1: हाँ
0: खूब
1: महत्व
0: महत्व है, पर अगर आप नहीं भी कर सको तो देखो घना जना अड़ा है कि जो बूढ़ा बुजुर्ग है वे घर मायने अगर गंगा जल है तो गंगा जल आप रे पानी में मिला अन स्नान कर अन सगड़ी पवित्र नदिया रो नाम लेन अगर स्नान करो तो बिल्कुल जो आप तीर्थ स्नान री जो जगह है बिन मुताबिक आपने जो पुण्य है बिन फल री प्राप्ति हो सके। पन
1: बिल्कुल। और जका लोग देखो कि भाई ये नहीं स्नान नहीं कर पाई रिया, तो बाणाड़ पड़ेड़ा कोई छोटा मोटा स्थान है, जो बीकानेर रो कोलायत ले लो, अजमेर रो पुष्कर ले लो, जयपुर में गलता जी ले लो, और बाण गंगा चित्तौड़ में, तो आप अठे जाए न कई जगह गोमु कुंड और है, बट आप स्नान कर और इनो फायदा उठा सको, जो भी आप नजदीकी स्थल है।
0: और यूं देखो कि आप बनास नदी पर जो मातृकुंडिया है नी धाम बिन एक विशेष महिमा है मंजू जी के, और कहे के भगवान जो परशुराम जी अवतार होया बे उठे आप रो जो मन है तो वो शांत करवा खातर उठे स्नान करियो हो तो आप उठे भी जा सको, और इन्हें मेवाड़ हरिद्वार नाम भी जानी जे है,
1: बिल्कुल
0: बेणेश्वर धाम है जो डूंगरपुर में, आप उठे जान भी स्नान कर सको, और अगर नहीं कर सको कोई कारण नहीं है कि भाई आप उठे जान इज कोई विशेष फल री प्राप्ति कर सको या आपरा मोक्ष री प्राप्ति री जो मान्यता है बिन खातर आप जाना चाहो तो घरे भी आप गंगा जल स्नान करो तो बिल्कुल वोर वो पुण्य वोर वो मानसिक शांति आपने जरूर से मिल सके।
2: ये जो की जा

0: मंजू जी, आप अबार बात करी पुष्कर राज री।
1: बिल्कुल
0: पुष्कर ने तीर्थ राज कहवे, और कहवत में कहवे है कि सगला तीर्थ बार बार, पुष्कर राज एक बार।
1: एक बार।
0: तो एड़ी है इन तीर्थ स्थान री, इन तीर्थ स्थान री महिमा। पौराणिक मान्यता और ग्रंथों के अनुसार यूं कहवे कि वज्रनाभ नाम रो एक राक्षस थो, जिनने वध खातर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आप कमल सू याने जो वध है बिन राक्षस रो वो करियो। और उन टाइम रो कुछ एक जो पंखुड़ियों हैं कमल री, वे धरती पर जठे पड़ी उठे पुष्कर सरोवर रो निर्माण होयो। और अठेरी जो पवित्रता है बिने देखन भगवान ब्रह्मा स्वयं माता गायत्री रे संग अठे यज्ञ करियो। तो केवल पुष्कर में ही जो है जो ब्रह्मा जी है ब्यारो प्रमुख मंदिर है, और अठेरे जो पूजा अर्चना है ब्रह्मा जी री वा केवल और केवल यूं कहवे के अठे ही होवे है। तो देखो हिंदू धर्म रा जो पांच पवित्र सरोवर है नी, बिहार माने भी पुष्कर राज रो विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल, सरोवर रे आपां अगर बात करा तो
0: चारों
1: इन
0: ओर
1: माते चारों 52 घाट है, और प्रत्येक घाट है उन माते अलग अलग नाम दियोड़ा है वाने। आपां उठ जाएं स्नान कर सका हाँ, और हर घाट रे माते, और आज पुष्कर झील है, अबार बरसात रे टाइम तो इतनी लबालब रेवे एकदम।
0: बिल्कुल। तो ये जो घाट है ब्रह्मा घाट, वराह घाट, गऊ घाट या गांधी घाट भी कहवे इन्हें, सप्तऋषि घाट और यज्ञ घाट ये मुख्य है। इन्हें अलावा भी काफी सारा घाट है जटे श्रद्धालुओं की भीड़ रहे, और खासकर 11 पूनम और अमावस टाइम लोग ज्यादातर जाया करे।
1: बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल अगर आप
1: और
0: भी
1: कोई भी तीर्थ करना हो क्या करेगा, अगर पुष्कर नहीं जाओ तो तीर्थ फले को
0: अधूरा
1: नहीं।
0: अधूरा रहे बिल्कुल। तो बिल्कुल आप भी अगर हो सके तो जरूर सुन पुष्कर राजरा दर्शन करो।

0: रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: देखो ममता जी, अपराटे राजस्थान में एक घीरी मनवार है, उन्हों बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि आ मनवार अपन करा तो इन लारे अपनो प्रेम और सम्मान रो भाव है वो मेहमान साथ जुड़ियो रहे। और देसी घी आप मेहमान ने परोसा और या यूं कहवा कि भाई पावना घरे आया है तो आनवारो मतलब आदर सत्कार अपन राजस्थान की पहली विशेषता है।
6: बिल्कुल,
5: मेहमान नवाजी अठारी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अठे घी खाली खावन रो हिस्सो नहीं है, बल्कि ताकत, सेहत और अतिथ्य रो प्रतीक मानी जावे है। तो आ घी री मनवार है, इनो महत्व कई है। इन मनवार रो महत्व ओ है कि राजस्थानी संस्कृति रमाए हिवड़े छू लेवन रो एक अटूट हिस्सो है। ओ
6: बिल्कुल,
5: मेहमाना ने प्रेम, आदर और जबरदस्ती रहते भर भर अरे घी खवाड़नो।
6: बिल्कुल, जब आप घी री बात कर रहे हो नी तो एक कहने के पुरानी याद आवे अपने दिमाग में। याद है एक जगह जिमण गया था, तो आपने अठे कही है कि गांव ढाणी और मैंने रीत है कि जिमण अवे नी कुछ कुछ जिमण ऐडा वे जटे घी री चरिया घूमिया करे।
5: बिल्कुल,
6: और वन चरी री धार नहीं टूटनी चाहिए। और बहुत पुराने टाइम में तो ओ भी हो तो, आज तो आप इन चीजों ने नहीं मानो कि ओ भी हो तो कि उन माते भी अर्जन लाग जातो उन परिवार माते, अगर के भाई अगर घीरी धार टूटी है तो मतलब आप रो आदर सत्कार उन तरह रो नहीं है, उत तो मनीच तो नहीं है, तो उन खातर भी आपने कोई कोई गांव रे तरफ फटकार पड़ जाती या ओड़ बो मिल जातो कि बिया रठे तो यूं कौन तो या यूं कौन तो। इन अलावा आप देखो कि आज भी अगर कोई पावन परी घरे आवे नी तो यूं तो क्या घी गुड़ आहा, अपर तो घी में डूबियो गुड़ देवे, कटोरी भरन घी घालन गुड़ उनमें डूबियो होना चाहिए। बात करो दाल बाटी चूरमा री, चूरमो तो घी लबालब वही जे, पर जो दाल आपे बाटी कहो नी, लोग तो बाटी रमाए ना घी लगावे, आपर आटे जो बाटी है घी में डुबो डुबो पचे घाले।
5: बिल्कुल, और यूं देख लो आप दाल और कड़ी रे छोंक भी अपा
6: घी में दे। बिल्कुल, और शायद आपर अठे वो तो भाई के घी में छमकड़ी कड़ी खावे।
5: बिल्कुल
6: है नी, तो बात आ है कि हाँ एक और रीत याद आई। देखो के बात आप जब पुराने टाइम में करो, आज ध्यान को नहीं है कि जब पंडित जन आया या जब देखता आपा कापाने देरानी जेठाने आई कि आप भी बैठा वाला भेड़ा तो याद आवे तो वह थाल हो तो।
5: बिल्कुल
6: ध्यान है, तो वह थाल रे माने जितनी भी सामग्री अपनी रसोई में बनियोड़ी है बिने बेड़ी कर चूरन पच घी लबा लब कर वन थाल रो जो कवा है वे वह रानी ने परिवार ने सब लुगाया चांदी रे सिक्के देती।
5: बिल्कुल, आज भी वह बहु खिचड़ी अच्छी तरह याद है क्योंकि नी भाव तोड़ी भी बिन जबरदस्ती खानो पड़ियो।
6: और सगली लुगाया विने यू कहती कि नहीं नहीं और थाल अब थने पूरो करनो है, और घर रो जो बड़ो सब बड़ो थाल हो तो वो लेन वीर माने हैं चूरता।
5: बिल्कुल
6: सही, आ है घीरी महिमा राजस्थान रे मायने। तो बिल्कुल, कदे मौको मिले तो कोई गांव ढाणी में जा अन घीरी मनवार जरूर सु देख जा।
5: बिल्कुल, पर राजस्थान में देखो एक और विशेषता है कि पानी की कमी रहती नहीं, जन कहीं करता कि घी उन्हीं जगह काम में ले लेता। और इन सब बड़ो उदाहरण है बीकानेर रो जो को भांडा सारो मंदिर है बणियोड़ो।
6: बिल्कुल,
5: वो क्योंकि अट पानी री कमी री जन क्योंकि घी रमाए इन मंदिर ने बनाओ तो जने घी 40,000 किलो घी रो इन जगह इस्तेमाल करी।
6: तो देखो आ है घीरी मम्या राजस्थान में, और इन उठा पड़े कि आपने अठे घी दूधरी नदियां वहती।
5: बिल्कुल।

0: अगम चौमा से लूकड़ी जो ना खोदे गेह तो नहीं चे ही जान जो गण बरसे लो मेह।
1: बिल्कुल ममता जी, के अगर चौमासरी रुत रहे और आवन वाली रहे और अगर लोमड़ी है रेगिस्तान दी वह आप रो अगर जो को कहे के घर ने खोदिया नहीं करे तो अपन जान लेनु, घर खोदिया करे तो अपन जान लेनु चाहिए कि अब बरसात है आवन वाली है। ऐड़ा ही कई सुगुन आपने अठे बडेरा मान्या करता हा, क्योंकि राजस्थान में हमेशा ऊँ कहीं दियो कि पानी दी कमी दी ही। राजस्थान में ज़्यादातर पानी पीवन वास्ते वर्षा रु जल है बिने इकट्ठो करन राखता हा, और मेरो पानी टांका टोबा तालाब या झीला रे माए सहेजन राख्या करता हा, और आपानी खुदरी प्यास बुझाता। और इनू ही आपाना जितना भी मवेशी हा या आप कह सका भाई दाव डांडा हा, पानी भी प्यास बुझा सकता हा।
0: बिल्कुल
1: राजस्थानी लोग हमेशा वर्षा रो बेसब्री इंतजार करियो है, और आनी आ मेहर प्रति बेसब्री ही आने मौसम विज्ञान ने परखना री और समझना री एक प्रेरणा अपने आप में दी ही।
0: जब
1: तो आज रा मौसम विज्ञानी जो को बतावे नहीं वे आपारा बडेरा उन टाइम में बताई दिया करता।
0: बिल्कुल, और यूं कहवे नहीं कि एक तो अपर सांस चले नहीं उन माथे भी लोग घना जना होता कि आपरी सांस देखन कहता कि इन दिशाओं में आई कि उन दिशाओं में आई कि तो आई वो भी बता देता। उन बाद में देखो कि आपरे वार टिटोड़ी होवे नहीं, टिटोड़ी कितना अंडा दिया कि वह अंडा रो मुंडो कठिन है, कितनी ऊंचाई माते दिया, इन माते भी वह अनुमान लगा लेता कि मैं केड़ो कुई।
1: बिल्कुल,
0: और
1: तो आप इनू संबंधित एक दोह है कि पीतल कांसी लोह में पड़िया काठ चढ़ जाए, पीतल कांसी लोह में पड़िया काठ चढ़ जाए, जल धर आवे दौड़ तो इनमें संशय न आए। अगर पीतल कांसी और लोहारा बर्तन है, पड़िया पड़िया में काट लग जावे तो अपन समझ लेना चाहिए

0: अब बरसात है वह आवन वाली।
1: इनमें विज्ञान भी है कि अगर
0: बिल्कुल
1: वातावरण में नमी है तो काट लागेला, और नमी है इनो मतलब बारिश आवन वाली है।
0: तो सोचो कि मैं कितना बड़ा मौसम विज्ञानी। हाँ
1: बिल्कुल, तो ऐ छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी जो समृद्ध संस्कृति है, अपनो रहन सहन रीति रिवाज है, बिहार अपने ज्ञान देवे।
0: बिल्कुल। और यूं ही देखो आप टाबर पड़े में जब चिड़िया ने धूड़ में या रेत में स्नान करे ने
1: हाँ,
0: देखता जन
1: मातो
0: पूछ लेता
1: गालन
0: दादी से नानी से ने कि भाई ये चिड़िया काई कर रही है। तो इन माते भी एक है कि चढ़ चढ़ करती छिड़क लिया करे रेत स्नान, चढ़ चढ़ करती छिड़क लिया करे रेत स्नान, तंबू सो अब दाणियों बादली आसमान। तो उन टाइम भी बरसात हमेशा दादी सनानी से
1: हाँ
0: नहीं कहता कि
1: बिल्कुल
0: अब बरसात आवन वाली है भाई, क्योंकि
1: एक
0: चिड़िया एना आ रही है।
1: हाँ। और मंजू जी देखो, कई बार अड़ो नहीं कि आप जो आजकल जो दौड़ धूप है ना, इर मैंने पुरानी चीजें भूल गया हूँ, पर आज जब बोल रही हूँ और याद करूँ तब सगली चीजों आखिर सामने आ रही है। एक
0: बिल्कुल
1: एड़ी ही मैं भी आपने दो लाइनों सुनाऊँ। अगम सूचे सांडनी दौड़े बना अपार, पग पटके बैसे नहीं जद में आवनहार। मतलब
0: बिल्कुल
1: कि ऊँटनी जो वर्षा रो पूर्वानुमान वहनी, वो ऊँटनी हो जाया करे जदवा अठू अठी दौड़न लागे और पग जमीर माते पटके और बैठे नहीं, तो समझ रहे के बरसात आने वाली है।
0: बिल्कुल।

0: कार्यक्रम जो है अपनी मायड़ भाषाओं से जुड़ो, तरह तरह री बातचीत बानगी कई तरह री रीत कहावतरो आपा इनमें समावेश करा हाँ। और हर बार कोई कोई मारवाड़ी री कहावत मारवाड़ी भाषा री कहावत आपा इनमें राजस्थानी री क्या करा। आज री कहावत है गेर दी लोई तो कई करेला कोई, मतलब कि जब कोई पूरी तरह निर्लज हो जावे तो बिनो कोई कई नहीं बिगाड़ सके।
1: बिल्कुल इन्हीं तरीकों। एक कहावत और है कि अंधा धुंधरी साई भी घटा टोपरो राज। तो अगर शासक ही विवेकहीन या मूर्ख है तो आपने कदे भी नहीं पड़ जावे है बाहोर ही नहीं रह सके। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जटा अंधा धुंधरी साई भी रही तो घटा टोपरो तो राज रहनो ही है।

0: मंजू जी, देखो कोई भी तरह रो महीनो होवे, कोई त्योहार होवे और घर रो कोई भी काम होवे, सगड़ो ही जो काम काज है या जो कह नहीं के आपाधापी है बाकी माते पड़े, तो कहवे कि घर री जो मुखिया है, जो महिला है, महिला मुखिया बिन माते रिया करे। तो यूं देखवा जाओ तो जो माँ हो वह पूरो परिवार रो ध्यान तो राखे है, पर जद बात आवे खुदरे माते तो घनी चीजा है जकी वह नजरअंदाज कर देवे, या इतनी जितो ध्यान देनो चीजे उतो ध्यान नहीं देवे। एक उम्र वे जब तक तो आज ही असर नहीं करेला, पर कुछ समय बाद 30-35 साल री उम्र रे बाद में अगर आप ध्यान नहीं देवो, आप रे स्वास्थ्य रहो, आप री शरीर रो जुड़ियों दी जुड़ियोड़ी छोटी छोटी दिक्कतों रहो, तो आगे जाने बड़ी हो सके।
1: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल जरूरी है कि जो घर री आपद आपी है वेणु थोड़ो सा समय निकाल, अन आपरी उम्र रे अनुरूप, आपरी उम्र रे अनुसार कुछ एक जाचो है बिन पर आपने जरूर सु ध्यान देना चाहिए। तो सब पहली बात जो आ रही है वह है मेमोग्राफी री। मेमोग्राफी यानी स्तनों री जांच। 40 वर्ष री उम्र रे बाद में महिलाओं ने नियमित रूप आ जांच करानी चाहिए, क्योंकि जो स्तन कैंसर है बिना जो शुरुआती चरण है या लक्षण है बिनु आप आवण वाली बहुत बड़ी बाधा ने रोक सको या दूर कर सको हो।
1: बिल्कुल
0: दूसरो टेस्ट है पेप स्मियर टेस्ट और सर्वाइकल कैंसर री जांच रे वास्ते विया करें, और समय पर स्क्रीनिंग या जांच कैंसर रो जो जोखिम है बिना आप रोक सको हो। एक बात और है मंजू जी, कि बात जब सर्वाइकल कैंसर री हो रही है तो कम उम्र री जो बच्चियां हैं 14 साल तक री,
1: बिल्कुल आजकल आणु टीकाकरण रो वो चाल रही हो है, तो
0: हाँ
1: आप जरूर छोटी बच्चियां ने ले जाओ और इनो टीकाकरण जरूर कराओ।
0: HPV वैक्सीन आप इन्हें किया करो, तो अगर समय पर आप वैक्सीन लाग जावे तो भविष्य में जो बड़ो खतरो है बिना आप टाल सको हो।
1: बिल्कुल यूं ही ब्लड शुगर है झुकारी भी जांच टाइम टाइम माते कराणो रह चाहिए, क्योंकि एक उम्र रे बाद शुगर और लेवल है वो अप रह जाए ही करे हाई रेवे, तो अपन ध्यान रखना है कि भाई अपनी बढ़नी नहीं चाहिए, तो इन्हीं जांच जरूर करा लेनी
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: शुगर कारण जो डायबिटीज जड़ी परेशानी है विनो आप बच सको हो जांच कारण। और लिपिड प्रोफाइल एक और जांच है, आ जांच शरीर में अच्छा और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है बिनी मात्रा बतावे, तो हृदय रोग रे खतरे रो आकलन आप समय पहले कर सको हो।
1: बिल्कुल
0: एक
1: इन्हीं तरीका हूँ। दूजी जांच अगर आप कहवा तो थायराइड रो टेस्ट है, तो आ देखो आजकल ज्यादातर महिलाओं में समस्या है थायराइड वाली, तो आप इनो टाइम टाइम आते जांच कराता रहो, क्योंकि अब यार अपन देखा तो इन दौर में ज्यादातर महिलाओं है PCOD री शिकार, तो आप अगर जांच नहीं कराओ तो आपने ठा नहीं पड़ेला कि भाई आप किन तरीका बीमारी ग्रस्त रह सको हो, तो जांच करा लेनी है ताकि उन्हीं संभावना है पर कम रह जावे। इन्हीं तरीका विटामिन डी और कैल्शियम रो टेस्ट भी टाइम टाइम माते करा लेना चाहिए।

0: आजकल विटामिन 12 की कमी है, बहुत ज़्यादा महिलाओं में रेडी है। तो इन सुकई है कि विटामिन B12 रो एक टेस्ट आया करे बोकराणो है, ताकि आपने इन्हीं कमियों जो को है वो छुटकारो मिल सके। जो अगर आपने थकान आ रही है या नशा में आप खिंचाव महसूस कर रहे हो या जकड़न रह रही है, तो ज़रूर आ समस्या रह सके, तो आप जाओ और टेस्ट कराओ।
1: और यूं ही एक जो सामान्य समस्या है, लगभग हर महिला ने या एक उम्र तक बाद में, एक उम्र के बाद में बच्चों ने भी लिया करे, वो है एनीमियारी तकलीफ। तो अगर एनीमियारी तकलीफ आपने पता करनी है तो आप आयरन टेस्ट करवा सको। तो ध्यान पड़े कि खून जो है या हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है शरीर में वह कितनी है। इन्हें अलावा बोन डेंसिटी टेस्ट, लीवर और किडनी की जाँच, सोनोग्राफी, स्टूल टेस्ट, कंप्लीट यूरिन टेस्ट, ECG, एक्सरे, एडी कई सारी चीज़ें हैं जो एक उम्र के बाद में समय समय पर जांच करनी जरूरी है, ताकि आने वाले बड़े खतरे ने आप टाल सको और आप परिवार के संग एक बढ़िया सो खुशनुमा सो जीवन आप जी सको।
0: बिल्कुल।

0: मंजू जी, पहले के टाइम में जब भी कोई नवो दिन आतो या कोई वार त्यौहार होतो या छोटो मोटो कहीं भी काम होतो नहीं घर परिवार माने, तो आंगणो लीपने री ऊपर रीत देखता हर जगह। आज भी है तो घनी जगह यूं है कि जब नयो दिन आवे नहीं तो भले एक छोटी सी जगह, एक छोटो सो चौकी एक तरफ राख के जको लीपन तैयार राखे और माते आपरे जो मांडना है या लीपना है वह कर करान। एक छोटो दिवाली रमायने हाल भी करे गाँव रमायने, एक छोटी सी जगह अड़ी राखे जटे ताजो लीप प्रोन पछे एक दियो जरूर रख्या करे।
1: बिल्कुल
0: तो आ है अपनी संस्कृति और इनी एक कला ने मेल खावती एक और संस्कृति या कला आपे केवो लिपन आर्ट या लिपन कला। लिपन नामो ही अपन ने ठा पड़े है के लीपने हूँ इन कला री शुरुआत हुई और ज्यो ज्यो दिन आगे बीतता गया ज्यो इन कला रमायने और निखार आयो। भारत में गुजरात राज्य रे कच्छ क्षेत्र रमायने एक पारंपरिक भित्ति चित्र है मड मिरर जिन्हें कहवे या लिपण कला जिन्हें

0: दीवारा वगैरह लिपियोड़ी है, तो उस घर ने ठंडो तो रखी है। साथ ही देखो कि आजकल जो कोई कैंसर जेरी खतरनाक बीमारी है आ बढ़ रही है, इन रोकन रो काम करिया करे है। तो इन गुजरात रो लिपन आर्ट तो फेमस है ही है, आप सब जाना हाँ। इन्हीं सामग्री जद आप इन्हें लिपा तो कहीं कहीं काम में लिया करा, तो चिकनी माटी और गोबर रह साथ है गोंद डाल और इन्हें लिपिया करे है। और आज अगर देखा तो कई आधुनिकता रे दौड़ में एक्रेलिक मिट्टी आएगी है जो, तो इन हाथे फेविकोल मिलाए और इन्हें करी जो है, तो इनमें कई डिजाइन बने जो मोर रो डिजाइन है, ऊंट रो डिजाइन है, आम रो पेड़ है, फूल है। तो स्थानीय लोक जीवन से जुड़िया जितना भी चित्र है वे इमा पर बनाया करा हाँ। और जिका कांचरा छोटा छोटा टुकड़ा है या दर्पण कह लो, जो गोल है, त्रिकोण है या चौकोर है, आने माटी में झड़ना रो काम करया करे, ताकि आ दिखण में भी इतनी फूटरी दिखे है।
1: एक काम और कर सके आ चीज की, पहले टाइम में लाइटों तो हती को नहीं, तो अगर एक दीवलो जगह हो तो ही पूरे घर रे मायने रोशनी रोशनी हो जाती।
0: बिल्कुल। और इनू देखो अपना सांस्कृतिक महत्व तो देखा तो मुख्य रूपों जो कि कच्छ री जो कि ग्रामीण महिला वही रेबारी समुदायों जुड़ियोड़ी बे वो काम ज्यादातर करती ही
1: बिल्कुल
0: और आज भी करिया करे बे ओ काम, और आज तो इन्हें विश्व स्तर माते पहचान मिली है। तो जुबली बहन और मीरा बहन जड़ी कई नामी कलाकार आज भी इन काम ने बचाए रखियो है और बचाए रखना में काफी मदद कर रही है।
1: और इन आर्ट एक और बात बताऊं कि पहले टाइम में तो घरों माते आंगणा रमाने होती, अबे तो आप वॉल आर्ट रूप में इनो काम बढ़ रही है कि आप दीवारों माते भीतों माते भी यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है वे बना अन आप फ्रेम करन लगा सको, तो सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाया करे कर रही।
0: बिल्कुल।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहां उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से

0: ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर

0: डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन

0: दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564

67.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की।
3: हुँ?
2: आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज

0: की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को।

मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: खुशियाँ अपनाएं खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 3 बजने वाले हैं। अब हमारी ये पहली सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होती है।

0: हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपका दिन शानदार जा रहा होगा। आखिर आज फ्राइडे है, यानी वो दिन जो दिल थोड़ा हल्का महसूस कराता है और चेहरे पे मुस्कान अपने आप ले आता है ना? तो जल्दी कीजिए, चाय की चुस्कियाँ हो या फिर सफ़र का साथ, जुड़े रहिए हम दोनों के साथ, यानी कि मैं स्वस्ति और मेरे साथ है।
1: और दोस्तों, मैं आयुषी। तो दोस्तों, पूरे दिन की थकान के बाद में ये जो सुकून वाली शाम आई है, इसका आपके साथ साथ हमें भी इंतज़ार था। हमें इंतज़ार इसलिए था क्योंकि हमें आपसे बातें करने का मौका

का मिलता है। फिलहाल इस मौके को जाने नहीं देते हैं और आपको भी एक प्यारा सा मौका देते हैं हम इतना प्यारा सा आने वाला म्यूजिकल ट्रैक सुनने का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आज के अगले म्यूजिकल सॉन्ग की ओर।

0: दोस्तों कहते हैं कि कुछ दिनों का इंतजार ना हमें पूरे हफ्ते रहता है, और उनमें सबसे खास दिन होता है फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे का मतलब है बस थोड़ा और फिर वीकेंड। कितना सुनने में अच्छा लग रहा है ये।
1: बिल्कुल अच्छा तो लगता ही है स्वस्ति। फ्राइडे आते ही लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। ऑफिस में काम वही होता है, कॉलेज की क्लास भी वही होती है, लेकिन मन में एक ही बात चल रही होती है कि कल छुट्टी है।
0: और कुछ लोग तो फ्राइडे शाम से ही वीकेंड के सपने देखने लगते हैं। कोई घूमने का प्लान बनाता है, कोई दोस्तों से मिलने का, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, और कुछ लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि कल अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा।
1: सच में, लेकिन वीकेंड का सबसे बड़ा सुख ये भी तो होता है कि सुबह उठकर घड़ी नहीं देखनी पड़ती। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन नींद भी जल्दी खुल जाती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने आयुषी। वैसे दोस्तों आज हम आपसे ना एक मजेदार सवाल करने वाले हैं। अगर आपको पूरे हफ्ते को एक फिल्म का नाम दे

0: ना हो तो उसका नाम क्या होगा?
1: अगर मुझसे पूछोगी यही सवाल तो मैं उस फिल्म का नाम बताऊंगी, भागम भाग।
0: और अगर मेरी बात करो तो मैं तो बोलूंगी ऑल इज वेल, क्योंकि चाहे कितना भी काम हो, फ्राइडे आते आते सब अच्छे लगने लगता है।
1: लेकिन दोस्तों, जिंदगी में हमेशा कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। कभी कभी एक अच्छी चाय, दोस्तों की हंसी, पसंदीदा गाना और एक आरामदायक शाम ही काफी होती है।
0: बिल्कुल, और आज यही कोशिश करेंगे फ्राइडे इवनिंग में, कि यही कोशिश करेंगे आप सभी को हंसाएं, मुस्कुराएं और मुस्कान से भर जाए आपका दिन। अगर आपका दिन थोड़ा थकाने वाला रहा तो अब रिलैक्स हो जाइए।
1: क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके लिए हैं। कुछ प्यारी बातें होंगी, कुछ मजेदार किस्से होंगे और ढेर सारे प्यारे प्यारा म्यूजिक भी होगा, है ना? तो स्वस्ति, क्या बोलती हो?
0: बिल्कुल। वैसे आयुषी, तुमको क्या लगता है वीकेंड शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है?
1: मेरे हिसाब से तो फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और अपने पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताओ। जो काम पूरे हफ्ते नहीं कर पाए उनके बारे में वीकेंड पर भी मत सोचो और वीकेंड को एंजॉय करो।
0: बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो वीकेंड का असली मजा है अच्छे गाने सुनो, चिल करो, रिलैक्स करो। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं हमारी अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: स्वस्ति, तुमने ये सोचा है कि कभी कभी कुछ जो सॉन्ग्स होते हैं जो बिना वजह मूड जो है हमारा अच्छा कर देते हैं, कभी नोटिस किया है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनका कोई खास रीज़न नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बजते हैं हमारा जो मूड है वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। जैसे कि कभी सड़क पर चलते हुए, कभी बारिश में, कभी हेडफोन्स लगाकर लेट नाइट, और कभी बस यूं ही रैंडम शफल पर, है ना?
1: बिल्कुल। और म्यूजिक ना शायद दुनिया की एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए वर्ड्स की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा गाना और डांस करा बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। एक पुराना गाना या पुरानी यादें ले आता है।
0: बिल्कुल, कई बार हम सैड नहीं होते, बस टायर्ड होते, थके हुए होते हैं, और तभी एक फेवरेट सॉन्ग सडनली थेरेपी बन जाता है। मतलब सुनते ही ऐसा लगता है कि सारी थकान जो है वो दूर हो चुकी है। वैसे ही कुछ लोगों के लिए जो ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक म्यूजिक होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको। कुछ लोगों को इंडी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ के लिए लाउड पंजाबी सॉन्ग्स, वो बीट्स बज जाए कि वो धमाकेदार शानदार अपनी जगह से उठ करके नाचने ही लग जाते हैं। लेकिन फीलिंग जो है किसी में भी सेम नहीं होती है ना यार, ये सॉन्ग सुनकर अच्छा लग रहा है ऐसा हम फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आज हमारा जो अगला आने वाला गाना है वो अगर हम सुनाएं, जिसे सुन करके तुम्हें कैसा लगता है वो तो मुझे बताना, और हमारे दोस्तों से भी अब मैं पूछती हूँ आपको कैसा लगता है ये आप भी सुनिएगा और सोचिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले म्यूजिकल और धमाकेदार सॉन्ग की तरफ।

हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युव वाणी में, जहां आप बने हुए मेरे साथ यानी कि आरजे स्वस्ति के साथ। कहते हैं कि जब जुनून मैदान पे उतरता है तो इतिहास तो बनता ही है। जब सपने सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हौसलों में बस जाते हैं, तब हर चुनौती एक नए अवसर में बदल जाती है। और जब प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास एक साथ मैदान पर कदम रखते हैं ना, तो सिर्फ एक मैच नहीं खेले जाते बल्कि प्रेरणा की नई कहानियां लिखी जाती है। आज बात ऐसे ही एक मंच की है जहां हर रन के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी है, हर विकेट के पीछे संघर्ष और एक कहानी है, और हर जीत के पीछे पूरी देश की उम्मीदें जुड़ी हुई है। यह मंच है उन खिलाड़ियों का जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि सपने की कोई सीमा नहीं है और सफलता किसी एक पहचान की मोहताज नहीं है। आज दुनिया की बेहतरीन महिला क्रिकेट खिलाड़ियां एक बार फिर से मैदान पर उतर रही हैं, अपने देश का गौरव बढ़ाने, नई कीर्तिमान स्थापित करने और करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो तैयार हो जाइए रोमांचक, जोश और उत्साह से यादगार पलों से भरे इस शानदार सफर के लिए, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है विमेंस T20 वर्ल्ड कप और इसका जादू ना एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिल को छूने वाला है। भारतीय टीम भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतर रही है। हम सभी की निगाहें होंगी कैप्टन हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदना की और जो युवा सितारे हैं उनके ऊपर। भारत का पहला मुकाबला होने वाला है रविवार को यानी कि 14 जून को। टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रोमांचक मैच होने वाला है क्योंकि यह है भारत बनाम पाकिस्तान का मैच। तो तैयार हो जाइए चौको छक्को और शानदार मुकाबलों से इस रोमांचक सफर के लिए। हम सभी की ओर से भारतीय महिला टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, इस शानदार म्यूजिकल सॉन्ग के बाद में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम युगवाणी में, जहां मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयुषी और मेरे आज साथ है,
1: यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो लगभग हर इंसान की जिंदगी का ना हिस्सा बन चुका है, फोन, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया।
0: अरे भाई क्या टॉपिक है। मतलब स्वस्ति, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि मोबाइल फायदा है या नुकसान, तो तुम क्या कहोगी?
1: मैं तो यही कहूंगी कि मोबाइल एक टूल है। फायदा या नुकसान इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
0: बात तो सही है, लेकिन ये भी है ना कि आज मोबाइल की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कुछ ही सेकंड्स में बात भी कर सकते हैं, ये भी फायदा हुआ।
1: लेकिन सिर्फ बात ही नहीं, पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग, शॉपिंग और जरूरी जानकारी भी मोबाइल से बात प्राप्त कर
0: बिल्कुल,
1: सकते
0: साथ
1: हैं।
0: ही सोशल मीडिया ने कई लोगों को अपनी कला और टैलेंट दिखाने का भी तो प्लेटफॉर्म दिया है।
1: लेकिन आयुषी, कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जितने फायदे और उतने ही नुकसान भी है।
0: बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन टाइम का बढ़ना, कई लोग घंटों तक रील्स और वीडियोस देखते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि वक्त कब निकल गया।
1: और इसका सीधा असर हमारी नींद, पढ़ाई और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। कभी कभी लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से खुशी नहीं रहते, कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो इतने खुश है, वो ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, और हम खुशी नहीं है।
0: क्योंकि ऐसे इसीलिए ना कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग ना अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ अच्छे पल ही दिखाते हैं, तो कंपैरिजन तो आएगा ही।
1: और एक और दिक्कत है, वो है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत, जो कि है फेक न्यूज़। हर चीज़ जो इंटरनेट पे दिखती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो।
0: तो ऐसे में क्या स्वस्थी, हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत है बैलेंस की। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनी है, हम उस पर हावी होने के लिए नहीं है।
0: मतलब मोबाइल को यूज़ करिए, लेकिन मोबाइल को अपनी ज़िंदगी को यूज़ मत करने दीजिए। मतलब ओवरऑल यही बात हुई कि कंट्रोल हमें खुद पर रखना होगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोबाइल के वजह से और सोशल मीडिया को यूज़ करने के वजह से आ रही है, लेकिन इसका एक ही सल्यूशन है, वो है सेल्फ कंट्रोल, कि कैसे आप अपना जो टाइम है वो मोबाइल में अगर स्पेंड कर रहे हैं तो कैसे उसे कंट्रोल करें। वो एक ही तरीका है जो आपका वक्त जो है वो बचा सकता है।
1: बिल्कुल। और ना, मेरे को लगता है हमको जितना फायदा है ना, वही मोबाइल में यूज़ करना चाहिए, नुकसान नहीं देखने चाहिए हम। क्योंकि ऐसा नहीं, हर चीज़ के फायदे नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन हम जितना उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ही सही रहता है। अगर हम उसको नेगेटिव यूज़ नहीं करें, जो लोग आजकल ये साइबर बुलिंग वगैरह ये सब हो रही है, वो सब ना हो, तो मोबाइल के बहुत फायदे हैं।
0: फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि सबका अपना नज़रिया होता है, सबके अपने काम हैं, उस हिसाब से किसी को मोबाइल काम में भी आ रहा है तो किसी के लिए जो है उनका टाइम वेस्ट भी हो रहा है। तो वो आप देखिए कि आप किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करके अपनी इन मोबाइल से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाल सके।
1: अभी ना हमारे श्रोताओं के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है अच्छे अच्छे गाने और बहुत सारा मस्ती और म्यूजिक। तो चलिए फिर सफर में आगे बढ़ते और आपको सुनवाते हमारी अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों, शामें अक्सर अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती हैं। कुछ मुस्कुराहटें, कुछ यादें और कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है तो मन भी जैसे कुछ देर के लिए ठहर जाता है। ऐसे ही पलों में कभी कोई पुरानी याद दस्तक देती है, कभी किसी अपने की कमी महसूस होती है और कभी किसी बीते हुए लम्हे की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं, भले ही उनका अंत हमें याद हो। कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ मुलाकातें वक्त के साथ पीछे छूट तो जाती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वैसे ही मैंने एक कहानी सुनी थी जो कि आज भी मुझे याद है, तो बस वही कहानी मैं आपके कानों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि वो कौन सी कहानी है।
1: शहर के बीचों बीच एक छोटा सा रेडियो स्टेशन था जहाँ काम करता था आरव। आरव की आवाज बहुत खास थी। ये सिर्फ बोलता नहीं, महसूस कराता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो आदमी हजारों लोगों को हंसा सकता था, वो खुद अंदर से बिल्कुल खाली था। हर रात 9 बजे उसका शो आता था, दिल की बातें। लोग कॉल करते, अपनी कहानियां बताते और आरव उन्हें सलाह देता, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शो खत्म होता, स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता और आरव की अपनी खामोशी लौट आती। एक रात एक कॉल आया, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं रोज तुम्हारा शो सुनती हूँ। आरव मुस्कुराया, थैंक यू आंटी, बताइए क्या बात है। महिला बोली, मेरे पास कोई नहीं है, बेटे बेटी सब अपनी जिंदगी में व्यस्त है, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनकर सो जाती हूँ। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आंटी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। महिला बोली, तुम हो इसलिए तो मैं ठीक हूँ। उस रात शो खत्म हुआ, लेकिन आरव पहली बार चुप नहीं था। वो सोच रहा था, मेरी आवाज किसी की जिंदगी का सहारा है। अगले दिन से आरव ने अपना शो बदल दिया। अब वो सिर्फ सलाह नहीं देता था, वो लोगों की बातें सच में सुनता था, उनके नाम याद रखता, उनकी कहानियां याद रखता। कुछ महीनों बाद वही बुजुर्ग महिला फिर कॉल पर आई। उन्होंने कहा, बेटा अब मैं अकेली नहीं लगती। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्यों आंटी। महिला बोली, क्योंकि अब मुझे लगता है कोई मेरी आवाज भी सुनता है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ बोल नहीं रहा, वो जुड़ रहा है। कुछ समय बाद एक दिन वो महिला कॉल पर नहीं आई। एक हफ्ता, दो हफ्ता, कोई खबर नहीं। आरव को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। फिर एक दिन स्टेशन पर एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, बेटा आरव शायद अब मैं तुम्हारा शो नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे मेरी आखिरी दिनों में अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। तुम सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं हो, तुम किसी की जिंदगी की आवाज भी हो। आरव लंबे समय तक उस चिट्ठी को देखता रहा। उस दिन उसने समझा, किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम नहीं, बस सच्चे दिल से सुनी गई एक आवाज भी काफी होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आवाज जो लौट आई, कि कभी कभी किसी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बस सुने जाने की। आपकी छोटी सी मौजूदगी भी किसी की बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी एक कला है।

0: दोस्तों, इस कहानी से अभी अभी हमने सीखा कि हर आवाज़ को जवाब नहीं चाहिए होता है। कुछ आवाज़ों को बस एक सुनने वाला चाहिए होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी बात सुने, हमारे मन की उलझनों को महसूस करे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमें सुने जाने की ज़रूरत है, वैसे ही दूसरों को भी होती है। कई बार लोगों को सलाह की नहीं, बस किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बिना टोके, बिना जज किए उनकी बात को सुन ले। एक ऐसा श्रोता होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छा वक्ता होना होता है। तो अभी आपने कहानी सुनी जिसका शीर्षक था आवाज़ जो लौट आई।
1: और अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक बहुत खास है और बहुत हम सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। वो टॉपिक है एक ऐसी सलाह जिसने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी।
0: स्वस्ति, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कई बार एक छोटी सी बात, एक छोटी सी सलाह इतना बड़ा असर कर जाती है कि पूरी सोच ही बदल जाती है हमारी।
1: बिल्कुल, लेकिन आयुषी, कभी कभी वो सलाह किसी किताब से नहीं बल्कि किसी अपने से दो बात करने से मिलती है। वैसे आयुषी, तुम्हें कोई सलाह याद है जो कभी किसी ने दी और तुम्हारी बहुत काम आई हो?
0: हाँ स्वस्ति, मुझे मेरी मम्मी ने एक बार एक कुछ कहा था, वो मुझे याद है कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पहले मैं हर बात पर अपनी सफाई देने की कोशिश करती थी, फिर समझ आया कि कुछ लोगों को जवाब नहीं, सिर्फ वक्त देना चाहिए।
1: वाह, बहुत खूबसूरत बात है। मुझे भी एक सलाह याद है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर मेहनत करो, जो नहीं उसकी चिंता ही मत करो।
0: और ये सलाह फॉलो करना शायद सबसे मुश्किल भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन जब ये समझ आ जाए तो ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। हम अक्सर उन बातों की फिक्र करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है बदलना।
0: सही कहा, और मुझे लगता है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी बात

0: जरूर होती हैं जो उसने कहीं सुनी हो और फिर कभी भूली ना हो।
1: वैसे आयुषी, मेरे पास एक और सलाह है जो मुझे बहुत पसंद है। दूसरों से नहीं, खुद के कल से बेहतर बनने की कोशिश करो।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सफ़र हमेशा चल सकता है।
1: अगर आपको भी जिंदगी में कोई ऐसी सलाह मिली है जिसने आपकी सोच या जिंदगी बदल दी है, तो प्लीज उसे अपने चाहने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि क्या पता जैसे आपकी जिंदगी बदली वैसे उनकी भी बदल जाए।
0: बिल्कुल, हो सकता है कि आपकी वो एक बात किसी और के लिए भी रास्ता दिखा दे। कोई अगर परेशानी में हो तो आपकी दी हुई वो सलाह उसे याद रह जाए और तब वो उसके काम आ जाए, है ना। तो आपको अगर अपने बड़े लोगों से ऐसी कोई सलाह मिले तो अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके उसके बारे में भी चर्चा करें, ज़रूर करें। इससे क्या होगा ना, आपको भी जब मुसीबत में वो बात याद आएगी, साथ ही आपके उस दोस्त को भी। फिलहाल के लिए स्वस्ति, मेरी एक सलाह है, वो तुम मान लो।
1: बिल्कुल,
0: वो ये है कि प्लीज़ एक गाना सुना
1: चलिए फिर
0: दो।
1: आप सभी को हम सुनवाते हैं हमारा ये अगला गाना।

0: सैटरडे संडे आते हैं ना, हम घड़ी या कैलेंडर सब कुछ देखना ही भूल जाते हैं।
1: क्योंकि वीकेंड का मतलब ही है नो अलार्म, नो हरी और ओनली चिल।
0: वैसे आयुषी, वीकेंड में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सुबह जल्दी उठते हैं, पूरा दिन प्लान करते हैं।
1: और दूसरे वो जो दोपहर में उठकर कहते हैं, अरे आधा वीकेंड तो निकल गया।
0: दोस्तों आप कौन से, अर्ली बर्ड या वीकेंड स्लीपर्स?
1: और अगर आप अभी चाय, कॉफी या अपनी पसंदीदा स्नैक के साथ में आराम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी शाम और भी खास होने वाली है।
0: क्योंकि आज हम जो बात करेंगे ना, वो करेंगे हम छोटी छोटी चीजों की जो हम वीकेंड पे करते हैं या और कैसे खास बना सकते हैं।
1: वैसे तो अभी तक हमने ढेर सारी बातें की है स्वस्ती, है ना, लेकिन अभी भी अगर तुम्हारे मन में एक दो बातें और रह गई है जिसका तुम जिक्र कर रही हो, तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे। कैसा रहा, है ना? तो क्यों ना अभी अगर हम आने वाला हमारा जो प्यारा सा सॉन्ग है वो सुन ले तो मजा आ जाएगा।

0: दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हम वर्ड ऑफ द डे लाते हैं। आज तो हम लाए नहीं अभी तक, लेकिन अब लेकर के आ गए हैं। और हर बार हम कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड उठा कर लाते हैं जिसका मतलब ना आपको पता होता है और हमने भी पहली बार ही सुना होता है। लेकिन आज हम ऐसा प्यारा सा वर्ड लेकर आए हैं ना, इतना सुंदर, इतना अच्छा और साथ ही उतना ही ईजी वर्ड लेकर आए हैं। तो आज का हमारा जो वर्ड ऑफ द डे है वो है बैलेंस।
1: बैलेंस यानी संतुलन। जीवन में हर चीज़ का सही तालमेल बना के रखना, यही तो बैलेंस है। जितना सुनने में आसान है, उतना ही जिंदगी में इसका बहुत महत्व है।
0: तो दोस्तों, इसका मीनिंग तो मुझे लगता है हम सबको पता है। बैलेंस, जो हम डेली अपनी लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते भी हैं, लेकिन यहाँ हम आपको वर्ड ऑफ द इसका मीनिंग ही नहीं ये भी बताने आए हैं कि यही जो वर्ड है ये हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर ज़िंदगी की एक साइकिल की तरह है, तो बैलेंस भी वही चीज़ है जो हमें गिरने नहीं देती। तो मतलब समझ रहे हो, ये वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, ये साथ में एक ऐसा टिप है जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए।
1: आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम सब कुछ पाने के लिए कोशिश करें कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन कभी कभी खुद के लिए समय निकाल कर भूल जाते हैं। बैलेंस हमें यही याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं है, सफ़र का नाम है। हमें खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए थोड़ा।
0: बिल्कुल स्वस्ति, तुम्हारी इस बात से मुझे एक इंग्लिश कोट है जो मैंने कई बार पढ़ा है और कई जगह पर इसके पोस्टर भी लगे हुए देखे हैं मैंने लाइब्रेरीज वगैरह में। तो मैं वो बताना चाहूँगी जो कि है, बैलेंस इज़ नॉट अबाउट हैविंग टाइम फॉर एवरीथिंग, इट्स अबाउट मेकिंग टाइम फॉर वॉट ट्रूली मैटर्स। यानी कि जो बैलेंस है वो इसीलिए नहीं है कि हमें हर जगह पे हमें जो टाइम मिल रहा है उसके लिए, बल्कि ये है कि हम जो सच में हमारे लिए मायने रखता है उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी तब तक सबसे खूबसूरत लगती है जब तक उसमें बैलेंस होता है।
0: तो दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी में काम, परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय समय का सही बैलेंस है या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बदलावों से भी बड़ा संतुलन बनाया जा सकता है। तो याद रखिए, ज़िंदगी तब सबसे खूबसूरत लगती है जब उसमें होता है बैलेंस। तो हम वर्ड ऑफ द डे जो है बैलेंस लेकर आए तो थे, लेकिन ये जो वर्ड है ये डे का वर्ड नहीं है बल्कि ये वर्ड ऑफ द लाइफ हो गया है। तो वर्ड जो बैलेंस है हम सब ट्राई करते हैं कि हम मेनटेन रखें, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हम सब कोशिश कर रहे हैं और एक दिन बैलेंस कर भी पाएंगे।
1: और ये प्रोग्राम भी ना तभी बैलेंस हो पाएगा जब हमारी बातों के साथ साथ मजेदार गाने भी हो। तो
0: बिल्कुल।
1: चलिए फिर सुनवाते अगला गाना।

0: दोस्तों, आज हम ढेर सारी हमने बातें की, साथ ही हमने सुनी एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक था आवाज़ जो लौट आई, है ना। जिसमें हमने ये जाना कि हम कई बार लोगों को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम सोचते हैं कि हमें बोलना चाहिए, है ना। इसी के साथ और भी कई सारी बातें की। अभी अभी हमने आपके सामने एक वर्ड ला के रखा जो कि था बैलेंस, जिसका मीनिंग आपको भी पता था और हमें भी पता था। बस हमने आपको ये बताया कि किस तरह आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अब वो समय हो चुका है कि आप हमें दे दें इजाज़त जाने की, है ना स्वस्ती।
1: बिल्कुल
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी, हम दो रेडियो बडीज जुड़े थे आपके साथ। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ थी,
1: यानी कि मैं आपकी दोस्त। अब हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। कल शाम ठीक 5 बजे आपके साथ होगी कार्यक्रम युववाणी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही

0: सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again confirmed conveyed

कल रात्रि 9:30 का समय होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम का। रात्रि 10 बजे श्रोता सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं कल रात्रि 8 बजे, दिन में 2:30 पर, दिन में 11 बजे व सवेरे 6:45 पर। सुगम संगीत का आनंद लेंगे कल रात्रि 9:15 पर, सवेरे 10:30 पर और दिन में 12:30 पर। कल सुबह 6:05

सुगम संगीत का आनंद लेंगे कल रात्रि 9:15 पर, सवेरे 10:30 पर और दिन में 12:30 पर। कल सुबह 6:05 का समय होगा श्री रामचरितमानस का। 6:15 का समय होगा कार्यक्रम वंदन का। सवेरे 7:00 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कल सवेरे 8:30 पर सूचनाओं से भरा कार्यक्रम नमस्कार, इसमें आप नए गानों के साथ साथ इतिहास में आज का दिन, सप्ताह विशेष, शनिवार की रेसिपी और सांस्कृतिक समाचार एवं खेल खबरें सुनेंगे। सवेरे 10:00 का समय होगा लोक गीतों से सजे कार्यक्रम लोक संगीत का। किसान भाइयों के लिए कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा हमेशा की तरह 1:05 का। कल 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी वाटिका व कल शाम 5:00 का समय होगा कार्यक्रम युववाणी का। हमेशा की तरह शाम 7:00 सजेगी चौपाल और 7:30 का समय होगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज का। ये था हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले शेष और मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: इति भारत ऋतु विज्ञान विभाग अवदत् यत् श्वः यावत् वायव्य भारते आर्द्र ऋतुः अनुवर्तते यत्र प्रजंड वातेन शिलावृष्ट्या च सह मेघावृष्टेः संभावना विद्यते। ऋतु विज्ञान विभागानुसारं अग्रिमद्वयोः त्रिषु वा दिवसेषु कर्णाटक तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनीया परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति अनुमितमस्ति। अन्ते शोकास्पदम् एका वार्ता। प्रसिद्धः भारतीयः लक्ष्यभेदन स्पर्धा प्रशिक्षकः क्रीडकश्च पूर्व एशियन गेम्स स्वर्णपदक विजेता जसपाल राणा दिवंगतः। सः 59 वर्षीयः आसीत्। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघस्य अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देवस्य अनुसारं श्री राणा गतरात्रौ दिल्ल्याः चिकित्सालये अन्तिमं श्वासम् अगृह्णात्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यादयः नेतारः जसपाल राणा वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कनाडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्ण क्षमतायाः साक्षात्काराय गत द्वादश वर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितम्। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहलीनगरे श्री अमरनाथ यात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थं उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पम्प इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबन्धितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानामुपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्यभेदन स्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 59 वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से क्रमशः हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया है। आज देश भर में महिला नेतृत्व वाले विकास के सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियाँ महिलाओं को सम्मान देने और सशक्तिकरण के लिए है। इससे महिलाएं आज विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार के क्षेत्रों में नई उड़ान भर रही है। केंद्र में

0: एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देशभर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की पद्धति पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है।
2: उपयोग यह होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें की डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे, ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब दो ढाई फीट का तीन फीट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
1: बूंदी जिले की केशवराय पाटन, तालेड़ा और हिंदोली पंचायत समितियों में कामकाज में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीडीओ सहित 11 काम विकास अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह व्यापक कार्रवाई की गई। इन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने हाल ही में इन पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यह बदलाव करते हुए बताया कि अब परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। इधर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 का आयोजन इस साल 6 सितंबर को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से यह परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 14 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि इस बार ये परीक्षा 35 विषयों में आयोजित होगी। इसमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू 5 नए विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्ययोजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण

0: भी देने को कहा। डॉ बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, एससी एसटी को, ओबीसी को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: आज बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरूआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार है। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि कई व्यक्तियों और फर्मों की बगैर पंजीकरण के ही वाहन किराए पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। श्री पचार ने बताया कि किराए पर वाहन देने के लिए परिवहन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी रेंटल फर्मों को अपने कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण

0: तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। सीकर अपनी हवेलियों, बाटिक कला और धार्मिक स्थलों के साथ साथ शौर्य के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इसी पहचान के साथ जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों से अपने सैन्य और नागरिक दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बिजेंद्र सिंह महला ने बताया कि नाम, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि तथा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और अन्य देय लाभों में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों का मिलान करने और आवश्यकता होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करवाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस के अवसर पर सीकर के राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाल श्रम, मानव तस्करी और शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन, बड़ा तालाब, मारू पार्क सहित कई स्थानों पर लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। स्काउट गाइड के सदस्यों ने नृत्य, नाटिका, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर फतेहपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महावारी स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से उड़ान 10 समर कैंप में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में हस्तकला, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, योग, नृत्य और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं, लाडो प्रोत्साहन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आमजन से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जयपुर रोड से बाईपास तक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए। नगर परिषद ने व्यापारियों और संस्थानों से

0: सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। सीकर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल माए महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती न बधावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश उगनी हलका माए गरज चमक सागे बरसात आतुनी हलका माए लू रो कोप। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला 12 साल माए देश बनावन रा काम माए महिलावारी पूरा बूता सागे भागीदारी रो एहसास करावन बाबत अनुकूल वातावरण तैयार किन्नो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि हर हलका माए महिलावारी मौजूदगी नजर आ रही है। पेश है समाचार कक्ष सलेहा गाजी री रपट।
2: प्रधानमंत्री संस्कृत श्लोक रो जिक्र करता थका महिलावा ने देश बनावन री नींव बताई। आज देश भर माए महिलावा री अगुवाई माए विकास रा बेहतर नतीजा साफ निजर आ रहा है। स्वयं सहायता समूह रे जरिए गावाई हलका री महिलावा ने ई माली तौरू खुदरे पाण उबी करी जा रही है और केंद्र सरकार री नीतियां महिलावा रो मान बधावन और वा ने मजबूत बनावन सारू है। इणु महिलावा विज्ञान अंतरिक्ष खेल और नवाचार रा हल्का माए खूब आगे बढ़ रही है। केंद्र माए एनडीए रा राजरा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए राज्य माई 3 दिन ताई प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।
1: केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निवेश प्लेटफॉर्म रो प्रचार करता था का बतावन वाला वीडियो ने फर्जी बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय री फैक्ट चेक इकाई वीडियो ने गलत बताता था का कहो का इन माए 22,000 रूपया रा निवेश मा थे रोजिना 80,000 और हर महीना 24,00,000 रूपया मिलन रो दावो करी चियो है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई रे मुजब ओ वीडियो एआई बनाई चियो है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बधावो देवन सारू आज जयपुर माए प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला और मल्लखंब प्रदर्शन राखी चियो। इन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानाओं कीड़ा मारण री रासायनिक दवाइयां कम काम लेवन और प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। श्री बागड़े किसानाओं रसायन काम लिया बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावन माए मदद करण री अरज कीनी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य जीवामृत बीजामृत और मल्चिंग सरीखा प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो के मौजूदा दौर माए रासायनिक खाद मोटी तादाद माए काम लेवणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
3: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
1: श्री शर्मा कहो कि किसाना री बरकत सारू राज्य सरकार पानी और बिजली री उपलब्धता तय करण री विगतवार योजना बनाई है। ई मौके गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कहो कि रासायनिक खेती रे कारण खेता माए मिट्टी माए ऑर्गेनिक कार्बन घणो कम वेक्यो है। बूंदी जिलारी केशव राय पाटन तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियां रा कामकाज माए लापरवाही रा आरोप माए बीडीओ और 11 ग्राम विकास अधिकारियां ने मुअत्तल कर दिया चिया है। आ ग्राम विकास अधिकारियां रे खिलाफ 16 CCA रातेत विभागीय कार्रवाई शुरू करण रा हुकम दिया चिया है।

0: प्रदेश में आज शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किया। 15 जुलाई तक चलन वाला आ शिविरों के जरिए लोगों ने न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो आसानी उंदियो जा रियो है और न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम मौके ही निपटाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर में शहरी सेवा शिविर री शुरूआत कीनी। ई मौके वे लोगों शिविर में मुहैया कराया जा रहा सुविधा की जानकारी लीनी और जमीरा पट्टा दीना। मेडिकल कॉलेजा में दाखिला सारू 21 जून ने ओजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा में अब विद्यार्थियों ने 15 मिनट बत्ता मिलेला। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए रे मुजब अब 195 मिनट री आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊ सिंजा 5:15 ताई ली जावेला। दूजीगानी कोटा विश्वविद्यालय री ओरू राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सैट 2026 इस साल 6 सितंबर न ली जावेला। इसारू 14 जून 15 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकाओं अर्जी दी जा सकेला। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर बी पी सारस्वत बतायो कि इन दफा आ परीक्षा राजस्थानी सिंधी पंजाबी फारसी और उर्दू समेत 35 विषया में ली जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा सड़का माथे हिफाजत न जनता रो आंदोलन बनावण सारू सगलाओं जिम्मेदारी सागे काम करण बाबत कहो है। वे आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री सड़का माथे हिफाजत रा जतन असरदार तरीकाओं करण सड़क हादसा रे जदमाए आवण वाला ने तुरंत मदद और बेहतर इलाज मुहैया करावण राई हुकम दीना। वे सड़क सुरक्षा मित्रा ने प्रोत्साहन राशि सागे जरूरी साजो सामान देवण बाबती कहो। डॉ बैरवा जनता सारू आसान और आरामदायक सफर तय करण सारू बसा री फिटनेस जांच करावण और बस चलावण वाला रा स्वास्थ्य री जांच करावण माथे जोर दीनो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले नौजवानों नशो नी करण बाबत कहो है। वे आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन में बोल रहा है। अठावले नौजवानों वारी ताकत देश बनावण में लगावण सारू कहो। केंद्रीय राज्य मंत्री कहो कि नशाओं समाज रा हर तबका ने नुकसान फै है। वे सगला लोगों ने आरे सारे रा नशो करण वाला ने नशो छोड़वा सारू प्रेरित करण बाबत कहो। मंत्री जातिरा आधार उन जनगणना ने देश सारू चोखी बताई।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन ये जानकारी मिलेगी। दूसरा हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिलेगी और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का एससी एसटी को ओबीसी को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है किनके पास बिजनेस है ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: श्री अठावले कहो कि नशा मुक्ति केंद्र खोलण वाला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय री ओर माली मदद दी जावेला। वह एक गैर सरकारी संस्थान का नीव राखी जिया नागरिक और दिव्यांग जन सम्मान समारोह में आई शिरकत कीनी। ये मौके वह कहो कि मंत्रालय दिव्यांग जन ने जरूरी साजो सामान मुहैया करावण तय कीनो है। आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाई चियो। ये मौके करौली में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करी चियो। इन तेत 12 जुलाई ताई सामुदायिक जागरूकताओं जुड़िया कार्यक्रम रख्या जावेला। इस आगे स्कूल छोड़ चुक्या बच्चा ने ओजू भणाई लिखाई उन जोड़बा और बालपना माए ब्याह न रोकण माथे जोर दियो चियो। जिला रा 30 गांवां रा सर्वे माए करीब 650 टाबरियां रे स्कूल छोड़बा और 600 टाबरियां रो बालपना माए ब्याह वेवण री शंकारी ठापड़ी। पाली जिलारा सुमेरपुर में एक बच्ची ने मजूरी आजाद कराई ची। रब मौसम राज्यरा उगनी हल्का माए लारला 24 घंटा माए बादलां री गाज और बीजलियां री चमक सागे जोरदार बायरो बाजो और बिरखाफी। श्री गंगानगर माए आज ओला पड़िया। दूजिकानी आतुणी हल्का माए कठे कठे लू बाजी और रात री बगत तेज गर्मी रही। प्रदेश माए घनखर ठोड़ा पारो 40 से 43

0: डिग्री सेल्सियस पीछे दर्ज करियो चाचियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 16 जून ताई कठे कठे बादल री गाज सागत तेज बारिश रा आसार है।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: एशियाई खेलां में सोना रो तमगो जीतण वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंक्या है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावण री सिखावण देवण में लाग्योड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवण पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर में खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल में महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत ने जन आंदोलन बनावन सारू भेली जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। प्रदेश रा उगनी हलका माए गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हलका माए लू रो कोप। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम चौपाल का।

गांव ग्वाड़ अर खेत खलियान री बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज। सिंजिया 7 बजिया सुनना ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको। झुमको कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थानी लोक गीतार लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई और ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर और ईमेल आयो है बाबू राम तेजा राम मनीष सुमता बेनीवाल और आना सगला घरवाला नेवरा रोड तहसील ओसिया सु गाँव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर कागज आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी सीमा शाइना विशाल मिगलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मिगलानी रो और कागज आयो है गांव चैनपुरा तहसील धोरीमीना बाड़मेर सु जगदीश भारती विजेश भारती नरेश भारती और मलिता गोस्वामी रो
1: बाड़ेरो और कागज आयो है जय नारायण सोलंकी राकेश सांकला जितेंद्र सोलंकी लक्ष्मण हरीश विष्णाराम गोपीलाल सोलंकी इंदिरा राम सोलंकी और आना घराड़ा
0: झालावाड़ सु और कागज आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभु लाल बागरी
2: रातनाडा सु नरेंद्र भाटी वीणा भाटी प्रीति भाटी अठेसुई माणा मित्र श्रोता बाबूलाल मरेठा और आना सगला दोस्त
0: उमरिया सु दीप्ति रजावत सोनम राजावत रेखा और रेशमा राजावत आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: ओ कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी मां मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरिठा रमेश साखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आना घना सारा साथी
0: राजू राम सेन पद्मा सेन प्रतिज्ञा सेन और रामनिवास सेन माने कागज लिखियो है खारा बेरा भीमावता लूणी
1: गांव अरनियाली तहसील धोरी मीना बाड़मेर सु फरसा राम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण शारदा खत्री भाग्यश्री हार्दिक खत्री सूरज देवी और सगलो परिवार ओ ईमेल भेजियो है भोपालगढ़ सु धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा और पूजा परिहार भोमेश परिहार माने ईमेल भेजियो है डूंगरपुरा शेरगढ़ सु गांव रामपुरा भाटियान सु माने ईमेल भेजियो है राम सिंह देवासी और थाना राम देवासी
0: खोकरा मारवाड़ सु लिखन वाला है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मणदास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला गरवाड़ा और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड्स गांव नारवा इंद्रो का सुन नरपतलाल सोनी शिवम और वैशाली खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाली जिज्ञा देवी श्रीमाली सीमा खुशी विशाल मन्नत सुनील किशोर ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगलो परिवार
1: गांव केलवाद सोजत सु और कागज लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल
2: कागज आयो है धोबी घाट इंदिरा कॉलोनी जोधपुर सु लिखन आला है नंद किशोर बारिया नंदू धनवंती काड़ू सुमन चांदनी और आनो सगलो परिवार
0: भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी
1: गांव चाड़ी सु उत्तम चंद छाजेड़ रानूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगलो परिवार
0: आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना
3: अरे आमद जले पर...

साथिया ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अब कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दी रहो नमस्कार।

पतरी लिखूं पी वने मारो कागज भीज गयो अरे नेने जलड़ो मावे नहीं मारो हिमड़ो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
1: राम राम ओ नमलोबा अरे फाटक बंद कर दी गई
2: अरे फाटक जड़ी ओड़ी कोई नहीं फाटक उड़ाली ओड़ी है
1: उड़ाली ओड़ी है
2: हाँ मैं पहुंच गया दियोड़ो है थोड़ो डोडो हाथ गन गाल खोल दो ना और मैं ही तो कमरे में और कौन हूँ
1: आया नमलोबा बोल को बचे
2: ओ नेड़ा आयो उठा
1: आया आयो नेड़ा आयो लो
2: ए थोड़ो कम है कि जाको कम पड़न दूगो ओ ठीक है बस ही भाई
1: हाँ ओड़क लेते हैं
2: ओड़क देखो बोली चालू कई वाला माल पांच रूपये दे अब निजी है कौन हो थोड़ो नेड़ो कहीं आये जाको पड़े
1: अच्छा
2: ने नमतावड़ो पड़े जी को देखो मार तो कहीं आ गया माती जोर घनो अपड़न दूगो
1: तावड़ो पड़े नवलोबा गर्मी घनी पड़े है और जो को कही है को आके माते तो असर तो थोड़ो घनो आई उम्र होगी थानी
2: होगी हो पण कहो है कि मैं चश्मो लगाऊनी
1: हां
2: तो इन माते कहो है वो धुंधली हो जा
1: अच्छा
2: तावड़े में पड़ियो रह था नी की करी है की थोड़ो हूं आजकल कूलर चलाऊंगो हां और कमरी में पड़े तो
1: अरे पहली तो नवलोबा है नीम रे ठंडी छाव में बैठा रहता
2: अरे तावड़ो हल्लो पड़े जी फिर देखो चाबी लिया जा
1: हां
2: तो मैं कहवा की कौन बे भर दे खटको खटको हूं नीच नाक गड़ी दो गड़ी चलाऊंगो देखो वहाँ थोड़ो कैन ठाडो भाई जी आवे नी तो थोड़ी क्या है घड़ी आधी घड़ी है जो की आखड़ी मीठी
1: ओ काम ठीक करियो नोलो बात के भाई ओ इनी आनंद है ले रहे हो कूलर रहो ठंडी हवा खा रहे हो तो जो को बारे फिरे वन वास्ते कही है
2: भाई बात आ है देखो जड़ो बाजे भाई को वेरी बीजे ओट अब मिनट मार तावड़ो पड़े
1: पड़े
2: और है जी को कह नी उगाड़ा हो फिरे तो भाई मैं तो आप रे कह नी मोटियार पड़े रख कह नी गाला घोड़ा दौड़ा
1: अरे नवलोबा वे कही है कि पापी पेट लारे फिर है मजूरी
2: हाँ हज बात है देखो फिर थोड़ा समझदार हो और मैं तो ठीक है भाई के पटिया धोड़ा यू ही करी उड़ा बैठा तो कू देखो साठ रो महीनो
1: है
2: तपत महीनो है न मैं देखो जू क्या नहीं तप इज्जत बंद
1: बड़ी सही बात है।

0: देखो ऋतु मुजब रहो,
1: ऋतु मुजब रहना
0: पड़े। काम काज करो तो जंद्र के कर लो, बेगा कर लो। इंद्र भाई देखो तावड़ो तपे तापर हिटा पे जाओ कर।
1: हाँ।
0: गर्मी है जो अनुती है वो कह टेम्परेचर चढ़ियोड़ो है,
1: टेम्परेचर चढ़ गयो ना बोला। सही बात
0: कही है, मेरी मोटिया राजत बाता और ही हो ना बात ठीक है की
1: ढलगा
0: ढलगा।
1: एक बात और है नवलोबा के भाई जो को अपार तो ध्यान रख सका खुदरो, लेकिन डाव डंडा और जीव जिनावर और पक्षी परिंदा रो ध्यान तो भाई अपने ही रखना पड़े।
0: वो तो है ही हो बचे, देखो मुट्ठी है चिड़ी है धोबो है कबूतरियो।
1: हाँ
0: भाई देखो है कोई दूजा जिनावरिया है
1: ऐसा न
0: तो तिर हंगा नहीं लगे
1: लागे
0: लगे गर्मी हंगा नहीं।
1: हाँ कोई
0: करना तो मिनक नहीं
1: मिनक नहीं पड़ी
0: करी है, मिनक मान नालो है मिनक बचव नालो है
1: और वही मिनक कह रही जिनमें मिनक मानो बचियो है।
0: हाँ बहुत कुदरत करावे
1: करावे सर
0: कुदरत निजाम मोटो।
1: हाँ सही बात
0: है नहीं तो देखो एक बात है थे और रेलगाड़ी आरो भीतड़ो हुनता आया नहीं।
1: हाँ
0: और कहूँ मुतबर थार कोटी बाहर जाऊँ विचार है
1: बाहर जाऊँ विचार हो नवलोबा। और आज कल में एक जगह पढ़ी हो कभी आज जो को है 12 जून और 12 जून जो को एक भारत रत्न प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर होया है ई श्रीधरन जी।
0: ओ मां जन्मदिन है जो
1: जन्मदिन है ऐसा जन्मदिन है
0: की कौन बंद तो कह भाई मुबारकबाद देनी है तो मुबारकबाद देता।
1: हाँ हाँ देवनी है
0: बात है पहले देखो तावड़ी घणो पड़े जो कोई कह नहीं उन नालो मेटन नालो कोई अड़ो गीत लो वे
1: हुनो हुनो नालो बा हुनो।

0: भाई ओ वाह, मैं समझ गो आ राग मनसा पड़गी आ राग है गौरी देवी रावरी।
1: बिल्कुल है नवलो
0: आर है जो गौरी देवी राग जग चावा हा जी वो कह नहीं कह पा रहे आकाशवाणी जोधपुर कलाकार हा।
1: हाँ नवलो बा
0: मैं तो हूँ हुई फोत होगा।
1: हाँ कल रात रे नवलो बा जो मैं फोत होगा पर आज सुबह वाणो जो है भी अंतिम यात्रा है।
0: अरे की कौन सा देखो बते आया जो जाई नव औदू मार गए
1: ऐसा नवलो
0: चौथा गीत ना दूजा गाया
1: गाया
0: तो अपनी कह नहीं खजानो छोड़ दिया तो वानी मंदिर रा फूल चढ़ावा
1: चढ़ावा नवलो बा
0: कोटी कोटी नमन करा ना मैं भरते बिगत बार बात नहीं जो कहता कोनी पर हूँ हमसार हुई हूँ के भाई देखो टाबरिया है नी टाबरिया ये तावड़े में है जो घना कह न टाबर में दुख घणो पावे।
1: हाँ
0: हाँ थोड़ घना टाबरिया डाबियड़े को डबे नहीं
1: नहीं डबे नवलो बा
0: कटी कटी तो हूँ देखियो हूँ पहला फिरतो गिरतो देख दो कई बार कई ठोड माते न टाबरिया ने कही है के होटला माते बे है जो काम करावता दिनों के ले रात तक कई खानिया में करावता और कई ठोड ठोड माते देखो हूँ देख तो उन बार कह मुंडा उतरी उड़ान कदी कदी हूँ कुछ का पूछ तो भाई के कटर रहो नाला हो की करो थार घरे कौन है तो के यार माई थे जिको कह भाई मोड़ा पतला हा।
1: हाँ हाँ
0: तो बे उठे कह है के भारी काम करण में हल्का काम करण में नेड़ा में लाग
1: थे जो को बात कही नवलो बा ए जो को बात होगी अबे पुरानी अबे कही है के सरकार और जो को मान को है वो भी इन प्रति कही एक जागरूक हो चुको है। और जो को बाल श्रम है अपने जो को होटला में या कटे खाना में या कटे खेता में करावे है काम टाब रहा हूँ वन वास्ते कही है के सजग है और इन वास्ते सरकार भी मोटा काम कर रही है।
0: अरे है जो आजकल कपड़े है टाबरी अगर काम देखो मार भड़ाई पड़ी रहती वे खेलन कूद रहती वे लाल उठे है जो क्या नहीं के काम में गाल
1: काम में गाल दे सर बिल्कुल सही बात
0: नो टाबरी हो है कितनी दो मुट्ठी है और जे कोई जानकार थान देड़ो मिन वे वो तो ओई पूछे भाई के भाई नन्ना टाबरी री वे कह नहीं की मुट्ठी दे कर के थारे मुट्ठी
1: में कई। हां बिल्कुल बिल्कुल
0: हां ए बात है ओ टाबर रो कह उरिया ने की तो फूट रो वे केड़ो कह
1: हो नवलो बा हो
0: आ बात है ओ तो देखो के कोई एड़ो कोई गीत तो हुनो कंजो को कह टाबरी के मंदरी बात अपन पूछ सका
1: हुनो नवलो बा हुनो।

0: साहब हर सी बात है भाई नन्ना टबरी अरे थारी मुट्ठी में कहीं है मुट्ठी में तो भाई देखो बंदी मुट्ठी है यार खुली मुट्ठी जाओ
1: हेंगू मोटी बात आ है नवलो बा के भी वो बाल श्रम जो करा हुआ हाँ या जो को पूरे दुनिया में चले है इन हेंगू मोटी जो को इन हानि का दुष्प्रभाव ओ है के जो को अपनो बच्चो है या टाबरियो है वो शिक्षा वंचित रह जावे
0: अरे हम देखो साहब मिन का मति है वो
1: हाँ
0: और कर्म गति है
1: ऐसा
0: कहता कहीं कहीं है जो को कह रचना रचि कुदरत कोनी अड़म नहीं होना सही है और है ना नहीं कह नहीं की भाई मौको
1: देनो चाहिए जैसे यार
0: ठीक ठीक है मैं लाओ पक्का विगत बार हुना कन थे कुन जलमियान कुन फोत होया
1: हुनो नोलो बा आज जो को जन्म दिवस है अपने जो को एक भारतीय राजनीति की है अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी वाणी आज जो को जन्म दिन है और वे अपार वर्तमान में जो को अपने कृषि और कृषक कल्याण मंत्री है
0: ओ ठीक ठीक अन्नदाता रो मैच मोहम्मद
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चौकी कह नहीं कहा अपनी कह भाई तरक्की किसान भयानी करण में लागू रहा है
1: हाँ नवलो
0: शुभकामना है कोटि कोटि बधाई है भगवान हजर ताजा राके इनसो का काम करता रहे बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं आज जन्मदिन है गीतांजलि श्री जीरो है जो को अपने हिंदी साहित्य जो को जानी मानी कथाकार उपन्यासकार है नवलोबा और हिंदी री जो को पहली लेखिका है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार सम्मानित करी
0: गया हो लुगी जात हो
1: हाँ
0: भाषा बाबा जी तो काम करे
1: करे नवलो
0: तो आनी है जो को कोटि कोटि बधाई है बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं आज जो को जन्म जयंती है सी के नागराज रावरी है अपने जो को भारतीय लेखक नाटककार निर्देशक हा और साथ साथ जो को अपने देख लोग सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी हा और नवलोबा है जो को अपने लेखन में जो को कन्नड़ भाषा जुड़ियोड़ा हा
0: ठीक ठीक है मैं तो कोई कटई ठोड़ी की भाषा है बारे बाबत जे काम करियो तो बहुगुणी मिनख हा तो आनी है जो कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदरेरा भूल सुनाओ बड़े
1: बड़े आज जो को जन्म जयंती है सुरूज बाई खांडे जीरी है जो को अपने बिलासपुर तालुक राखता है नवलोबा और अपने सोवियत रूस में जो को भारत महोत्सव हुए हो वोटे हिस्सों भी लिए हो और छत्तीसगढ़ री प्रसिद्ध भरतरी गायिका ही है
0: ओहो ठीक ठीक आप लोक संगीत में
1: बिल्कुल
0: गौरी बाई
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: आप

0: वाला सीन भाई वाह, निहाल कर दिया, खासी जानकारी ठीक ही दी है।
1: बड़े मैं आपने बताऊ, आज परिनिर्माण दिवस है सी नारायण रेड्डी जी रो, है अपने जो को आंध्र प्रदेश को ताल्लुक रखता है नवलोबा और तेलुगु भाषा रा प्रख्यात कवि है। और हेंगू मोटी बात आ है कि साहित्य रो जो को हेंगू मोटो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हों है सम्मानित है।
0: बस शाबाश, कहनी के हेंगू मोटो रो दुख मान मिलियो
1: मिलियो साहब,
0: और जटी ज्ञानी सेवा करी जी की मोटी है और कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है मंदिर रा फूल से नो बड़े
1: बड़े। आज जो को पुण्यतिथि है गोपीनाथ कविराज जी री, है भी आप संस्कृत भाषा रा जो को विद्वान हा और महान दार्शनिक भी हा नवलोबा, और है जो को कई जो को मोटा मोटा खंड में जो को आपरी कृतियां लिखी उमू जो को देख लो के विशुद्धानंद और विशुद्ध नंद वाणी है जो को कई खंडा में जो को प्रकाशित हुई।
0: वाह वाह, नारी नारी है नी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: विद्वान मिनखा तो सेवा कर्म किया आपरी।

0: नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है और मंदिर फूल से दो बड़े
1: आज जो को परिनिर्वाण दिवस है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जी रो है अपने जो को लोकप्रिय मराठी लेखक हा नोलोबा नाटककार और हास्यकार भी हा अभिनेता भी हा यू पूछ लो के बहु को मुखी प्रतिभा धनी हा
0: बहुगुणी
1: हा सा नोलो और है जो को अपने देख लो के जवाहरलाल नेहरू जब पहला प्रधानमंत्री बनिया हा तो वो इंटरव्यू भी लियो
0: देखो घना जग जावा मिन खा
1: हाँ सा नो
0: और मंदरी बात है जी को कह नहीं कह के है जी को मिन खा तक लाया तो एरा बिरजा मिन खा नहीं कोई नहीं भूल सके और कोटी कोटी नमन है मंदिर एरा भूल से डाऊ बड़े
1: आज जो को परिनिर्वाण दिवस है राजकुमारी नीलोफर जी रो है जो को अपने तुर्की रे जो को ओटोमन राष्ट्रीय साम्राज्य हो वहाँ राजकुमारी ही और बाद में अटे अपने हैदराबाद में जो को निजाम हो वहाँ जो को पुत्र मुअज्जम साहब हा वहाँ जो को विवाह हो गया अटे हैदराबाद आई
0: निका कर लियो
1: पचे यानो तलाक भी हो गयो नवलोबा वाणु और पचे दूसरी शादी है एडवर्ड जूलियट पोपू कर ली थी
0: वाकई कौन देखो कि भाई देखो कि निबी जी की सोगी और कह नहीं कि भाई करना काज ना है कुदरत रे हाथरी बात है
1: ऐसा नवलो
0: तो यही है जो कह नहीं भाई ऊंचे घरण मोटे घरण में आ तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि गाने है जो को नमन करा तरह गुल पेश करा और हूँ एक बात कह तो बा रेलगाड़ी है जो हूँ एक बार विचार हुई हो एक के दिल्ली में रेलगाड़ी जमीन में हाल है
1: हाले सा हाल
0: है कई छोड़ा मत हाल है
1: हाल है
0: उठ के गए थे कौन कहे हो
1: ई श्रीधरन
0: हाँ केलराड़ा
1: केरलवाड़ा
0: मैं तो भाई रा मैं सुरंगा करके कह नहीं के जोर कह के भाई देश की ताकत बदई और मैं आना जाना करना तो मन को आवे जावे ने कहो रेलगाड़ियां चलती हुई है
1: चले नवलोबा
0: हाँ तो देखो
1: इन वास्ते नवलोबा वाणे जो को है भारत रो जो को मेट्रो मैन कहे
0: हाँ कहे जान दे थोड़ थोड़ मत कही है कह नहीं के रेलगाड़ियां कम गेट्रो क्या है कहीं
1: मेट्रो मेट्रो
0: ओ ठीक ठीक बे गाड़ियां हरू करिए तो बढ़िया है बिरला मिनका ने और आने कोटी कोटी है जी को बधाई है
1: ऐसा ना बोलो
0: और कह दी भगवान हाजत हजरा के बड़े देश रिवाज सबको काम
1: करता रहे ना बोलो
0: और थे ये काम करो तो कर लो भाई थोड़ो
1: हर्ज सुनो
0: हर्ज सुना दो और फिर देखो दावत कबूल करो
1: बिल्कुल बिल्कुल ना बोलो।

0: तैयार करो और है जो हूँ फेर दू माड़ा और मार देखो मैं माड़ा फेर बैठो हूँ जी तारा ही खासा ऊंचा आएगा है अंदर ही पड़ गो है और प्रोग्राम रो टाइम ही होगो पूरो तो भाई सेना हमें लेवा ही
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। प्रस्तुत है साज आवाज और अल्फाज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे मेरे यार की शादी है फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, जावेद अख्तर के बोल हैं और जीत प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं क्यों हो गया नाम फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है शंकर महादेवन, महालक्ष्मी अय्यर और स्नेहा पंत ने। बोले के हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान और लॉय ने।

अलका याग्निक की आवाज़ों के साथ, समीर के अल्फाज और नदीम श्रवण की साज, फिल्म का नाम दिल का रिश्ता।

फिल्म संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से ये गाना, जिसे आवाज़ें दी हैं चित्रा ने, बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाते हैं फिजा फिल्म से ये गाना, जिसे आवाजें दी हैं आशा भोसले ने, समीर के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से ये गाना आप सुनेंगे अलीशा चिना और सोनू निगम की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राहुल शर्मा का।

अगला गाना आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़, समीर के बोल और संदेश साडियाल का संगीत।

0: फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश है बंटी और बबली फिल्म से। शंकर महादेवन और सौम्या रॉय की आवाज़ें, गुलजार के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए

0: श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लॉ के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने

0: का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा

0: Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं केके की आवाज में गाए इस गीत के साथ।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे अगला गीत जिसे आवाजें दी हैं राहुल सोनी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं साज, आवाज़ और अल्फाज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे लकी फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। समीर के बोल हैं और संगीत से सजाया है अदनान स्वामी ने।

फिल्म संगीत में आगे आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ों में, समीर के बोल के साथ नदीम श्रवण का संगीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़, समीर के अल्फाज और नदीम श्रवण की बोल, माफ़ कीजिएगा, साज के साथ राज फिल्म से ये गीत आप सुनेंगी।

और प्यार हो गया फिल्म से ये गाना आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और अमर का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

रात की तन्हाइयों में सुरों का कारवा सजेगा, जब आपकी पसंद का हर एक नगमा बहेगा। आपकी खत और आपकी ईमेल गवाह है हमारी इस मोहब्बत के। अब रात के 10 बज चुके हैं, सुरों का जादू हर दिल पे चलेगा। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि मेरे प्यारे श्रोताओं। आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल पर मैं हूँ आपकी होस्ट, दोस्त और आपकी रेडियो हमराही मोनिका। रात के ठीक 10 बज चुके हैं और चारों तरफ एक मखमली खामोशी है, और इस खूबसूरत अंधेरे को सुरों से रोशन करने आ गया है आपका अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। जी हाँ, ये वो वक्त है जब आपके दिल की बातें आपकी फरमाई से सीधे मेरे रेडियो स्टेशन के टेबल तक पहुंचती है। आज का ये सफर बेहद खास है, क्योंकि मेरे सामने बिखरे पड़े हैं आपके ढेर सारे प्यार भरे पत्र और ईमेल्स। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहे हैं आपके खूबसूरत खूबसूरत ईमेल्स। किसी ने इन पन्नों में अपने पहले प्यार को याद किया है, तो किसी ने परसों पुरानी दोस्ती की अल्फाज दिए हैं। आपकी हर एक भावना, हर एक खत और आपकी हर फरमाइश को आज हम सुरों का खूबसूरत लिबास पहनाएंगे। अल्फाज आपके होंगे और आवाज हमारी होगी। इस सुहानी रात में गीतों की महफिल सबसे प्यारी होगी। खोल कर बैठिए अपने दिल के झरोकों को आप, अब हर फरमाइश पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए इस सुरीली रात का आगाज करते हैं इस गीत के साथ, जिसकी फरमाइश आई है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manchaheget@gmail.com पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले गाने की फरमाइश हमें मिली कहाँ से है। गांव कलाना तहसील भादरा से, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासर, सचिन कड़वासर, सतीश कड़वासर, योगेश कड़वासर और युद्धव कड़वासर की ये फरमाइश हमें मिली है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिश खातून का ये मेल हमें आया है। आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से ये मेल हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां का। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया, अपार डींगिया का ये मेल हमें आया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता और दीपक गुप्ता का ये मेल हमें मिला है। श्रीमती अंकु राघव गुप्ता, रागनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का ये मेल हमें आया है। और साथ ही मालियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन, सरथाना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन का ये मेल हमें आया है। इसकी फरमाइश की है जो गाना हम आपको अब सुनवाने वाले हैं।

और जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब सिंह राहुल का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट का ये मेल हमें मिला है। ये खत हमें आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना का। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव का। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघाई, महेश संघाई, प्रज्ञ संघाई, प्रतिज्ञ संघाई और पूरा संघाई परिवार की तरफ से ये मेल हमें आया है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, कीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का ये पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन गवाह है कि आपका प्यार इनबॉक्स फुल कर चुका है। तो चलिए माउस को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगला मेल किसका आया है। गांव हीरावाली फालीजी का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा का ये मेल हमें आया है। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का ये मेल हमें मिला है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का ये मेल हमें आया है। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव सिंधे का ये मेल हमें मिला है, मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से। आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे का ये मेल हमें मिला है, हिल स्टेशन खंडाला से। सिद्धार्थ गुडाने, अर्शनाताई गुडाने, हीरामन संडे जी, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गुडाने का ये मेल हमें मिला है, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से।

मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान भाई, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप का ये मेल हमें मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का ये मेल हमें आया है कवर कॉलोनी

बड़बहा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्राजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का मेल हमें आया है नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का मेल हमें मिला है इस अगली गाने की फरमाइश के लिए। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपकी रेडियो हमराही मोनिका। कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं आपके द्वारा भेजे गए मेल्स और पत्रों को, और साथ ही सुनवा रहे हैं आपके फरमाइशी गीत। आप भी अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manchaheget@gmail.com पर। श्रोताओं, रात की तन्हाई में अक्सर एक बात होती है जब आपकी फरमाइश हमारे साथ होती है, यूं तो खामोश सो जाता है ये सारा जहान, पर रेडियो पर सुरों की एक नई बारात होती है। श्रोताओं, हमें अगले गाने की फरमाइश आई है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूले वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मताशा, आसू अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले फैमिली की ये रिक्वेस्ट हमें आई है कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से। उम्मीदाराम ओम प्रकाश मदन चौधरी जिला बालोतरा से ये मेल हमें भेजा है। डोडी लोहरा से प्रभा जमोरिया, अनुश्री जमोरिया और पूजा डॉली जमोरिया का ये मेल हमें मिला है। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानूबी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरा मुलानी परिवार की तरफ से ये मेल हमें मिला है। मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर से। राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का ये मेल हमें मिला है छत्रपति संभाजी नगर से।

अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी का ये मेल हमें आया है बैनीपट्टी मधुबनी बिहार से। फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का मेल हमें आया है सबलपुर कांकेर से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि अगला मेल हमें कहाँ से आया है। तो ये मेल हमें आया है एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे ललिता गणेश कार्तिक परी खर्चे का। बुलढाणा वर्णसंगी महाराष्ट्र से ये मेल हमें आया है अमोल मानकर शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार का। सहदेव दामोदर शशिकला सुमेत कुमार का ये मेल हमें आया है बुलढाणा इस्लामापुर महाराष्ट्र से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेचा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का ये मेल हमें मिला है। और वणिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा का ये मेल हमें आया है हमारी अगले गाने की फरमाइश के लिए। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

सांसों की ये जो डोर है वो तो एक दिन टूट ही जाएगी, मगर ये मोहब्बत, ये सुर, ये कभी ख़त्म नहीं होते। वाकई जब प्यार सच्चा हो तो उम्र की हर सीमा छोटी पड़ती है। अभी अभी हम सब सुन रहे थे फिल्म वीरान से आपकी बेहद पसंदीदा फरमाइश। इस गाने के शब्द जितने खूबसूरत है उतने ही पाकीज़ा वो मोहब्बत है जो आज हमारे इनबॉक्स में आपके खतों के ज़रिए दिख रही है। इसलिए इस पाकीज़गी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली फरमाइश किसकी है। तो ये फरमाइश हमें आई है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार की। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का ये मेल हमें मिला है रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का ये मेल हमें आया है गांव फ्रांसी हिसार से। अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा का ये मेल हमें आया है पानीपत हरियाणा से। अगले गाने की फरमाइश हमें मिली है श्री कृष्ण बाठे संदीप, अमूल्य बाठे की तरफ से धाणी नांदूरा महाराष्ट्र से।

0: इस गाने की फरमाइश हमें आई है बिहारी कॉलोनी सहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन वीना चैतन्य मेघा से,
1: उसे बुझा।
0: और उसी के साथ चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना की तरफ से ये गाना सुनने की फरमाइश की गई है।

अगली फरमाइश हमें आई है शिवाजी नगर से, राजेश खोबरखड़े शिवसागर इंदिराबाई छकुतली ताई की तरफ से, और उसी के साथ खांडवी बुलडाणा से दीपाली राम शाड़े सवराज राम शाड़े की तरफ से। ठिलोरी दुरियापुर से ये फरमाइश हमें आई है सुनियाना पवन भांडे और तनुष पवन भांडे की तरफ से, और साथ ही धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौसाद सलमानी बेबी आलिया और अयान बाबू की तरफ से ये फरमाइश हमें मिली है। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

दोस्तों, वक्त कम था वरना शिकायतें और भी थी, आपसे मिलने की चाहत इस दिल में और भी थी, जिन्हें आज हम सुन ना सके वो उदास ना हो, इस अधूरे सफ़र में मिलने की उम्मीद और भी थी। जी हाँ दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। आज हमारे इनबॉक्स में ईमेल्स का ऐसा सैलाब आया कि वक्त ही छोटा पड़ गया। मेरे बहुत सारे प्यारे श्रोताओं की फरमाइश आज छूट गई, जिसके लिए मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन वादा रहा, अगले हफ्ते मन चाहे गीत की महफिल सजेगी, तो शुरुआत आपकी उन्हीं छूटे हुए मेल से होगी। दोस्तों, आज आकाशवाणी के सूर्यनगरी चैनल पर आपके भेजे खत और आपके खूबसूरत ईमेल्स ने इस रात को इतना मुकम्मल बना दिया कि पता ही नहीं चला कब 10 से 11 बजने को हैं। आप सब ने अपने दिल के जज्बात मुझसे बांटे, इसके लिए आपकी इस रेडियो हमराही मोनिका की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब रुखसते महफिल का वक्त आया है, घड़ी की सुइयों ने ये पैगाम सुनाया है। शुरू के इस सफ़र को आज यहीं रोकते हैं, ख्वाबों में मिलने का वादा फिर इस रात ने दोहराया है। जाने का मन तो नहीं है, मगर जाना ही पड़ता है ताकि फिर से आपसे मिल सके, आपके ईमेल्स को मैं पढ़ सकूं और मन चाहे गीतों के साथ आपसे मुलाकात हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का सूर्यनगरी चैनल। अब अपनी दोस्त, अपनी रेडियो हमराही मोनिका को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन वीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted